0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: अरे ओ सांबा, कौन सा रेडियो चैनल सुनता है रे?
1: सरदार रेडियो महारानी 89.6 FM।
2: अच्छा अच्छा।

0: क्या ये सब?
1: क्या
2: So, I think he deserves something better.

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत

0: क्या वाकई ज्यादा है?
1: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: सुनो सुनो।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
0: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है।

0: 89.6 FM। कुछ हटके
1: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
2: कुछ हटके।

0: अरे भाई, लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है। तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
1: आसान ही आशिक हो जाना, पलकों पे कांटों को सजाना।
2: जब मोहब्बत इबादत बन जाए तो कुर्बानी कैसी। प्यार वो नहीं जो सिर्फ जीने दे, प्यार तो वो है जो खुद को मिटाकर भी दूसरे को जीने का हौसला दे।
1: तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं आना।
2: राहुल जैकर, एक मशहूर सिंगर जिसका सुर दुनिया के लिए एक जादू था।
1: सुन रहा है
2: के अंदर का दुख एक ऐसा राग था जो सिर्फ वो समझता था। और फिर एक दिन, एक बारिश भरी रात में, उसकी आवाज से ज्यादा खूबसूरत एक आवाज उसके दिल तक पहुंची। आरोही,
3: आरोही,

0: कुछ नहीं, बस यूं ही।
1: हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा।
2: एक सिंपल सी लड़की जो सिर्फ गाना चाहती थी, राहुल ने उसके सपनों को पंख दिए, उसे बुलंदियों तक ले गया।
3: कितना अच्छा गाते हो तुम।
4: मैडम ट्रेनिंग मेरी नहीं आपकी है, चलो गाओ।
5: तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं या ना।
2: पर खुद वो प्यार जो उसके जीने की वजह बना, वही उसके होने का बोझ बन गया।
6: क्यों आए तुम, दूरी रहना था ना।
7: अरे यही तो बात है, जब तुम नहीं थी तो मेरा दुश्मन सिर्फ मैं ही था, इसके पहले कि मैं तुम्हारा बन जाऊं, जस्ट गो अवे।
1: भुला देना मुझे, अलविदा तुझे।
2: आरोही का प्यार उसके लिए दुआ था, पर कभी कभी दुआएं भी किस्मत से नहीं जीत सकती। एक प्रेम कहानी जो अधूरी होकर भी पूरी थी, एक आशिकी जो मरने के बाद भी जिंदा थी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स एक प्याली सुकून।
1: यार एक बात बता, पानी पर GST लग गया है क्या?
2: अरे नहीं यार, पानी तो बिल्कुल फ्री है।
1: तो फिर भी कोई रख क्यों नहीं रहा? अरे भाई, जब ना कोई टैक्स है ना कोई डिलीवरी चार्ज है, तो एक प्याला पानी रखने में कैसा एतराज है?
2: इससे पहले कि ये बेजुबान मोहल्ले का RTI दाखिल करें कि पानी गया कहाँ, उससे पहले एक बर्तन भर दीजिए और बेजुबानों की जान बचा लीजिए।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई, अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: तो अर्ज क्या है?
0: अर्ज
1: करते हैं
0: इशार।
1: जेबों में आइस क्यूब डालकर गर्मी भगाता हूँ, जेबों में आइस क्यूब डालकर गर्मी भगाता हूँ, तौलिया और बनियान पहनकर ऑफिस आता हूँ।
0: ऑफिस जाते हो या शौचालय?
1: अरे आगे सुनो। इस गर्मी ने कर दिया है सबका बुरा हाल। अब बॉस के लिए पीपीटी के साथ लस्सी भी बनाता हूँ।
0: जैसी तेरी टूटी फूटी शायरी है ना, वैसी तेरी लस्सी भी होगी। अपनी लस्सी तो ही पी, मैं आता हूँ।

0: अरे भाई, लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है। तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
1: मुझे वीराना पसंद है, समझे।
2: कुछ कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं होती, श्राप बनकर नेटफ्लिक्स के हॉरर सेक्शन की तरह हमेशा जिंदा रहती हैं। एक शापित हवेली, एक राज जो मौत से भी ज्यादा भयंकर था, और एक जैस्मिन जो सिर्फ नाम से मासूम थी। एक दिन उसने एक तांत्रिक से मेकओवर पैकेज ले लिया और बस अब वो सिर्फ लड़की नहीं डायन बन चुकी थी। पर हर बुराई का अंत होता है, पर इस बार श्राप लाइफ टाइम वारंटी के साथ आया था। सालों बाद हवेली एक बार फिर जाग गई और इस बार नए मेहमान की तलाश थी।
3: तो आज रात पुरानी हवेली के पीछे झील के किनारे आ जाना।
2: वीराना सिर्फ एक जगह नहीं, एक हॉरर फिल्म का एक्सटेंडेड वर्जन है। जो आया वो गया नहीं, और जो गया उसका लास्ट सीन अब तक एक्टिव है। अगर कभी किसी वीरान हवेली में फ्री स्टे मिले तो समझ लो पेमेंट तुमसे नहीं, तुम पर होने वाला है।

0: अरे भाई, लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है। तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
1: हर दरवाजा सिर्फ लकड़ी का नहीं होता, कुछ एल्युमिनियम के भी होते हैं, और कुछ के पीछे तो मौत लिखी होती है। राहुल और निधि नए घर की तलाश में, पर जो मिला वो एक मनहूस कहानी थी। एक हवेली जो सदियों से बंद थी और एक दरवाजा जो सालों से बंद था, शायद जाम हो गया था। जब उन्होंने उस दरवाजे को छुआ तो पूरी हवेली जाग गई, दीवारों से सांसें सुनाई देने लगी, दरी पर पैरों के निशान उभरने लगे, और फिर वो दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि अगर तुमने उन्हें खोला तो हो सकता है अंदर वाले तुम्हें बाहर ही ना आने दें।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स एक प्याली सुकून।
1: अगर वो बोल सकती तो शायद कहती, थोड़ा पानी मिलेगा। मगर वो बोलते नहीं, बस लाचार भरी नजरों से हमारी ओर देखते हैं। तो आइए उनकी प्यास हमारी इंसानियत से मिटाएं। गर्मी में बाहर पानी रखिए, क्योंकि थोड़ा पानी बहुत सुकून देता है।

0: शुरू आजा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
2: अर्ज नहीं होता, अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ।
2: इरशाद।
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
2: मेरा नहीं, तुम्हारा ही होगा।
1: सबका ये सब कुछ टूटा फूटा है, फिर भी अपना रुतबा है यारों।
2: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
2: ऐसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तो मैं मोटिवेट हो जाता।
2: अरे यार, वो तुम्हें कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो, मैं तो चली गई, मेरी बस आ गई।
1: सुनो सुनो, हेलो

0: शुरू हो जा।
1: तो अर्ज किया है?
0: अर्ज अर्ज
1: कर रहा हूँ।
0: तो करना।
1: इरशाद तो बोलो।
0: इरशाद इरशाद।
1: हाँ, पानी से नहाकर निकलते हैं पसीना भिगा देता है।
0: अरे रे।
1: अरे पानी से नहाकर निकलते हैं तो पसीना भिगा देता है, एसी कूलर वाला हमें देखकर शटर गिरा देता है।
0: तुम्हारी हरकतें जानता होगा।
1: अब पूरा सुनो पहले। पैसे निकालने के बहाने एटीएम में ठंडी हवा खाने घुस जाते हैं। पैसे निकालने के बहाने एटीएम में ठंडी हवा खाने घुस जाते हैं। अंदर सोया हुआ गार्ड हमें थप्पड़ मार के भगा देता है।
0: आप डिजर्व भी यही करते हैं।
1: अरे
0: अब तू बोलता रहे भाई, हम चलते हैं।
1: अरे सुनो।

0: अरे भाई, लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है। तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
1: चलो करें कुछ मजा।
2: नया घर लेना मतलब नए सपने, नई उम्मीदें और कभी कभी नए मेहमान। एक नया घर लेना लाइफ का बड़ा अचीवमेंट होता है, पर जब घर के साथ एक भूत मुफ्त मिले तो
3: भूतनाथ नहीं, ये मेरा घर है, चलो निकलो यार।
2: शर्मा फैमिली गोवा शिफ्ट होती है और एक हेरिटेज लुक वाला बंगलो रेंट करती है, नाथ विला। भाई नाम ही इतना क्लासी है तो भूत भी VIP होगा। मोहल्ले वाले वॉर्न करते हैं, भाई हॉन्टेड है, पर इंडियन पेरेंट्स को सिर्फ 2 महीने का रेंट दिख रहा होता है। घर में अजीब चीजें होने लगती हैं, टीवी खुद चलना बंद, फ्रिज से आइसक्रीम गायब, मतलब भाई भूत भी फुल सैवेज मूड में है। पर छोटा बंकू भूत से दोस्ती कर लेता है। भूतनाथ अंकल भी सोच रहे होंगे, अरे यार ये डर क्यों नहीं रहा,
4: कान्हा भूत हूँ।
5: कान्हा भूत नहीं होते, अच्छा तुम यहाँ पर रहने आए हो।
2: धीरे धीरे पता लगता है कि नाथ साहब ही इस घर के असली मालिक हैं और यहीं अटक गए हैं। EMI का लोन चुकाना पड़ा होता तो पहले ही स्वर्ग सिधार जाते। अब बंकू की मिशन मोड एंट्री होती है, भूत को फ्री करना है। एक तरफ स्कूल का होमवर्क और दूसरी तरफ भूत की मोक्ष यात्रा। बचपन काफी स्ट्रेस में चल रहा था, आखिरकार नाथ अंकल स्वर्ग एक्सप्रेस पकड़ के निकल लेते हैं और घर अब हॉन्टेड नहीं रहा। लेकिन शर्मा जी की टेंशन खत्म नहीं हुई, अब उनको नया टेनेंट ढूंढना है। घर सस्ता मिले तो एक बार चेक कर लो, कहीं घर के साथ भूत मुफ्त ना मिल रहा हो, क्योंकि हर भूत भूतनाथ नहीं होता।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स एक प्याली सुकून।
1: ब्रेकिंग न्यूज, मौसम विभाग का कहना है कि गर्मी अपने चरम सीमा पर है। धूप इतनी तेज कि आम का अचार बिना धूप में रखे ही बन रहा है और सड़क इतनी गर्म कि चप्पल भी इमरजेंसी मैसेज भेज रही है। पर सबसे ज्यादा मुश्किल में कौन है? वो जो बोल नहीं सकते, सिर्फ उम्मीद से देख सकते हैं।
2: लेकिन टेंशन लेने का नहीं, सॉल्यूशन देने का टाइम है। एक बोल पानी रखो और किसी की प्यास का कूलिंग सिस्टम बन जाओ, क्योंकि एसी तो घर के अंदर है पर इंसानियत हर जगह होनी चाहिए।
3: रेडियो महारानी 89.6 FM कहता है, गर्मी से लड़े या ना लड़े, लेकिन प्यास से लड़ने के लिए एक कदम जरूर बढ़ाएं और इंसानियत का फर्ज निभाएं।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यह होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: भाई, लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है। तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
1: दोस्ती, प्यार, परिवार और एक डॉग जो लव स्टोरी का असली हीरो निकला। प्रेम एक बिंदास देवर, निशा एक शरारती साली साहिबा, दोनों की नोक झोंक मस्ती और आंखों ही आंखों में रोमांस चल रहा था।
2: पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है।
1: पर ये कोई ऑर्डिनरी लव स्टोरी नहीं थी, ये थी संस्कार सिनेमैटिक यूनिवर्स की ओजी फिल्म।
3: हम आपके हैं कौन?
2: ये मौसम का जादू है मितवा।
1: पिक्चर से लंबे गाने, दिल से दोस्ती, भाभी तेरा देवर दीवाना और प्रेम निशा का पहला पहला प्यार, सब कुछ स्मूथ चल रहा था। पूजा, जो प्रेम के भाई राजेश की पत्नी थी, एक ड्रामेटिक एक्सीडेंट का शिकार हो जाती है और फिर होता है संस्कार वर्सेस प्यार का महायुद्ध।
2: मुझसे जुदा होकर तुम्हें दूर जाना है।
1: लेकिन राजरे की फिल्म में ड्रामा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? राजेश के लिए निशा का रिश्ता फिक्स होने वाला था, पर प्रेम का प्यार और टफी, हाँ वही लेजेंडरी डॉगी, हीरो बनकर बीच में आ जाते हैं। अब सवाल ये था, प्रेम सेक्रिफाइस करेगा या प्यार की होगी जीत? फैमिली ड्यूटी स्ट्रॉन्ग निकलेगी या दिल की सुननी पड़ेगी?
2: आपके
1: प्यार किया तो डरना क्या? एंड एट लास्ट निशा और प्रेम का प्यार जीत जाता है और फिल्म की होती है हैप्पी एंडिंग।

0: आप हमसे हमारी जिंदगी मांग लेते, हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने तो हमसे हमारा हेलमेट ही मांग लिया।
1: अब हम स्कूटी कैसे चलाएंगे?

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है?
0: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इरशाद,
1: करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं।
0: तुम अभी इसी लायक?
1: चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स, ओटीपी सब दे दूंगा।
2: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे,

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है, और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: अरे भाई, लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है। तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
1: अनजाने अजनबी।
2: शादी सिर्फ शादी नहीं होती, थोड़ी सी शर्माहट, थोड़ी सी मिठाई और
3: हमारी शादी में अभी बाकी है हफ्ते चार।
2: एक तरफ प्रेम, जो सीधा साधा लड़का जो शादी को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता है, और दूसरी तरफ हमारी पूनम, जो एक शर्मीली और सुशील लड़की जो प्यार को एक समर्पण समझती है।
4: जी जी, क्या कह के उनको बुलाओगी, दूल्हा बनके जो आएगी।
2: पहली नजर में शर्माना, घर वालों का आशीर्वाद और विवाह फिक्स।
5: सहरा सजा के घोड़ी चढ़ के जब तुम आओगे तो जानती हो क्या होगा?
6: क्या?
5: हमारे गली के कई घरों में चूल्हों पे रोटियां जल जाएंगी।
2: राजश्री की पिक्चर में ड्रामा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? लड़की वाले नर्वस, लड़के वाले ओवर एक्साइटेड, पर जब किस्मत ने कठिन इम्तिहान दिया तब प्रेम ने दिखाया कि असली प्यार सिर्फ सुंदरता से नहीं, अपनी जिम्मेदारी निभाने से होता है।
1: तुझको जी भर के मैं देखूं, मुझे हक है।
2: और इसी के साथ हैप्पी एंडिंग होती है विवाह मूवी की, क्योंकि सच्चा प्यार सिर्फ शादी के मंडप तक ही नहीं, जिंदगी भर साथ चलने का वादा होता है।

0: 69.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स एक प्याली सुकून।
1: अगर वो बोल सकती तो शायद कहती, थोड़ा पानी मिलेगा, मगर वो बोलते नहीं, बस लाचार भरी नजरों से हमारी ओर देखते हैं। तो आइए उनकी प्यास हमारी इंसानियत से मिटाएं। गर्मी में बाहर पानी रखिए, क्योंकि थोड़ा पानी बहुत सुकून देता है।

0: अरे भाई, लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है। तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
1: तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम।
2: प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं, कभी कभी इंतजार का नाम भी होता है। सिमरन, सपनों में जीने वाली लड़की।
3: मेरे ख्वाबों में जो
2: आए। राज, मस्ती मजाक और दिल से जीने वाला आशिक।
4: रुक जाओ दिल दीवाने,
2: यूरोप के एक सफर में मिले, टकराए, लड़ते झगड़ते दोस्ती हो गई, पर प्यार समझने में देर लग गई।
5: कोई बात नहीं सेनोरिटा, कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
2: जब सिमरन एक तय की गई शादी के लिए इंडिया गई, राज ने फैसला किया प्यार को जीतना है, पर परिवार के आशीर्वाद के बिना नहीं। एक तरफ संस्कार, दूसरी तरफ सच्चा प्यार, एक तरफ मजबूरी तो दूसरी तरफ जुनून। राज ने घर से रिश्ता जोड़ा, सबका दिल जीता, लेकिन बाऊजी का पत्थर दिल पिघलाना अभी बाकी था। और फिर आया वो पल जिसने सब कुछ बदल दिया।
6: जा सिमरन, जा, जा जीले अपनी जिंदगी।
2: इसलिए कहते हैं

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: अहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा सी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: अरे सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
4: हम कहीं ने कहूँ कि वाह फरे वादल फरे ने वायरो फरे, पर एक बार बोलिया पची मारा मित्रों, आ मित्रों कदी ना फरे के हाँ।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यह होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: अरे भाई, लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है। तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
1: कुछ घर सिर्फ घर नहीं होते, कुछ दीवारें सिर्फ दीवारें नहीं होती, और कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती। वो इंतजार करती हैं वक्त का। एक कहानी मोहब्बत, धोखा और एक आत्मा का इंतकाम। ये कहानी है 1920 की।
2: तुझे मैं प्यार करूं और इतना प्यार करूं।
1: अर्जुन सिंह राठौड़ एक आर्किटेक्ट जिसने फैमिली के खिलाफ जाकर लीसा से शादी की और प्यार उन्हें एक वीरान हवेली तक ले आया।
3: इतने खूबसूरत घर को कोई तोड़ना क्यों चाहता है?
1: जो सिर्फ एक हवेली नहीं, एक मनहूस कहानी का गवाह भी थी। उस हवेली में आते ही अजीब हादसे शुरू होने लगे।
4: कौन है?
1: लीसा को अजनबी चेहरे दिखने लगे। हवेली में अजीब आवाजें आने लगी। एक भयानक साया उसके आसपास मंडराने लगा।
4: इस घर में कुछ है जिसे मैं छू नहीं सकती, पर महसूस जरूर कर सकती हूँ।
1: और फिर लीसा को एक तस्वीर मिलती है गायत्री की, और उसके बाद आता है एक सच। ये कहानी सिर्फ प्यार नहीं, इंतकाम की भी थी।
3: लीसा और कोई नहीं, गायत्री ही है बेटा। वो दूसरा जन्म लेकर पालनपुर आ पहुँची है।
1: वहाँ के प्रीस्ट ने ये चेतावनी भी दी थी कि मोहन कांत की आत्मा वापस आई है लीसा के रूप में। और फिर आती है अमावस की रात। लीसा का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। पर आखिर जीता सिर्फ एक ही, सच्चा प्यार। अर्जुन ने लीसा को आजाद किया और वो आत्मा हमेशा के लिए हवेली की दीवारों में समा गई। मोहब्बत हो या हवेली, पुरानी हो तो संभाल के रखना, और हाँ, अगले जन्म के वादे सोच समझ के करना। क्या पता कौन सीरियसली ले ले।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स एक प्याली सुकून।
1: जीवन का असल सुख किसी और के जीने की वजह बन जाना। सूरज की गर्मी तेज है, हर तरफ तपती जमीन है, लेकिन सोचिए कहीं कोई छोटी सी जान एक बूंद पानी के इंतजार में है। बस एक आदत बना लो, एक छोटी सी प्याली पानी भरकर किसी सुरक्षित जगह रख दो। छोटी सी मेहनत लेकिन किसी के लिए बड़ी राहत। सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, उनके लिए भी सोचिए जो बोल नहीं सकते।

0: शुरू हो जा।
1: तो अर्ज क्या है?
0: अर्ज
1: कर रहा हूँ।
0: तो करना।
1: इरशाद तो बोलो।
0: इरशाद।
1: हाँ, पानी से नहाकर निकलते हैं, पसीना भिगा देता है।
0: अरे
1: पानी से नहाकर निकलते हैं तो पसीना भिगा देता है, एसी कूलर वाला हमें देखकर शटर गिरा देता है।
0: मारी हरकतें जानता होगा।
1: अब पूरा सुनो पहले। पैसे निकालने के बहाने एटीएम में ठंडी हवा खाने घुस जाते हैं। अंदर सोया हुआ गार्ड हमें थप्पड़ मार के भगा देता है।
0: आप डिजर्व भी यही करते हैं।
1: अरे
0: अब तू बोलता रहे भाई, हम चलते हैं।
1: अरे

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स एक प्याली सुकून।
1: इंसानियत सिर्फ एक दूसरे के लिए नहीं, हर जीव के लिए है। क्या कभी सोचा है कि जो पंछी आपकी छत पर आते हैं वे सिर्फ उड़ने के लिए नहीं बल्कि किसी उम्मीद से आते हैं। गर्मी उनके लिए भी उतनी ही कठिन है जितनी हमारे लिए। एक छोटी सी कोशिश, एक मटका या एक बोल पानी भर कर रखिए, शायद आपकी एक कटोरी पानी से किसी की प्यास बुझ सके।

0: अरे भाई, लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है। तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
1: देखो, बॉयफ्रेंड्स ना फिल्मों की तरह होते हैं, कुछ टाइम पास तो कुछ ब्लॉकबस्टर्स।
2: मोहब्बत हो या म्यूजिक, दोनों अधूरे सुरों में भी खूबसूरत लगते हैं, और यही है ए दिल है मुश्किल की कहानी।
3: आज मुझे लग रहा है कि मैं अपनी फिल्म का हीरो।
2: अयान, एक मस्ती भरा आशिक।
4: जब मैं 2 साल का था, मेरी मम्मी मुझे छोड़ के चली गई।
1: चली

आज हम बात करने वाले हैं एक रॉयल हेरिटेज, कलरफुल बाजार्स और टाइमलेस कल्चर की, क्योंकि जयपुर कल्चर का ग्लोबल सुपरस्टार बन गया और यही रीजन है कि जयपुर को दुनिया भर में स्पेशल माना जाता है। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ अर्जुन श्री आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहाँ आज मैं बात करने वाली हूँ इंडिया की फेमस पिंक सिटी यानी कि जयपुर के बारे में। सो भाई, रिपोर्टेडली वर्ल्ड टॉप कल्चर सिटीज लिस्ट में प्लेस मिल गया है जयपुर को और ये रैंकिंग सिटीज के हेरिटेज, आर्ट, आर्किटेक्चर, फेस्टिवल्स और कल्चर एक्सपीरियंस को सेलिब्रेट करती है। यानी कि अगर बात करें जयपुर की, तो चलिए पहले ये जानते हैं कि आखिर क्या खास बनाता है जयपुर को। रॉयल पैलेसेस और फोर्ट्स देखने को मिलेंगे आपको यहाँ। कलरफुल बाजार है जयपुर के अपने, ट्रेडिशनल फूड एंड कल्चर को प्रमोट करता है, साथ ही फेस्टिवल एंड फॉक वाइब्स हर जगह आपको जयपुर में देखने को मिलेगी, चाहे फिर बात हो हवा महल की या फिर आमेर फोर्ट की। हर जगह हिस्ट्री और ब्यूटी का परफेक्ट ब्लेंड मिलता है। और अगर बात की जाए जयपुर की, तो जयपुर सिर्फ एक सिटी नहीं, एक रॉयल एक्सपीरियंस है। इसलिए ये अचीवमेंट इंडिया की रिच कल्चर और हेरिटेज को ग्लोबल लेवल पर रिप्रेजेंट करती है। तो हुआ ना जयपुर खास। और बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप आज तक जयपुर नहीं गए तो एक बार जरूर जाइएगा। जयपुर बहुत ही प्यारी सिटी है और गुलाबी नगरी कहा जाता है जयपुर को। यहाँ के बाजार भी अपनी रंगत में रंगे हुए हैं। सो जरूर जाइएगा एंड एंजॉय कीजिएगा रेडियो महारानी 89.6 FM को। साथ ही मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: जब ट्रैफिक हो टाइट और मौसम का मूड हो लाइट, वही मॉर्निंग एक्सप्रेस में मिलती है ट्रेंडिंग बाइट। सुनना ना भूले सुबह 7 से 10 ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम कुछ हटके।
1: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
0: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
2: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

आता माझी सटक सटक बम तेरा गुदे खाए, कमर पे तेरी बटरफ्लाई, बॉडी तेरी मक्खन जैसे, खाने में बस तू बटर खाए। कम ऑन बेबी टिकट टिकट काटू तेरी टिकट टिकट, खेलता नहीं क्रिकेट विकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट।

0: वेलकम बैक टू रेडियो महारानी। मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहाँ इस वीक हम सेलिब्रेट कर रहे हैं समर टू मॉनसून ट्रांजिशन वीक। आप सभी को बताया, इन दिनों मौसम ने कुछ इस तरह से अंगड़ाई ली है, कभी बारिश, कभी तूफान और कभी आंधी, ये सब एक साथ देखने को मिल जाता है। तो जो ये ट्रांजिशन वीक है, इसका हमारी हेल्थ पर कितना इम्पैक्ट पड़ता है, यही जानने के लिए आज स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है योगा एक्सपर्ट राधिका जी। सो आज इनसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं। तो पहले राधिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो महारानी के स्टूडियो में। अगर इस ट्रांजिशन सीजन की बात की जाए तो सबसे पहले ये बताइए, ईटिंग हैबिट में क्या चेंज करना चाहिए, क्या अवॉइड करें और क्या इंक्लूड करें?
1: रेनी सीजन में मुझे लगता है जो अवॉइड करना चाहिए आपको, सबसे पहले आपको रॉ सैलेड्स अवॉइड करने चाहिए
0: जी,
1: क्योंकि रॉ सैलेड्स पे जो भी आपके इन्फेक्शन या जो भी बैक्टीरिया है ना, वो बहुत जल्दी स्टिक करता है। और रेनी सीजन बहुत ज्यादा वैसा होता है कि सब्जी कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, कितने ह्यूमिड में आ रही है, किस तरीके से वो लाई गई है ना, वो हमको नहीं पता होता। कच्ची सब्जियां और फ्रूट्स ऑफ कोर्स कच्चे होते हैं, बट उसके अंदर भी आप सीजनल फ्रूट्स खाएं, जैसे बाहर से आते कि ये वहां का है, ये वहां का है, आई डोंट प्रेफर दैट। पे मुझे लगता है जिस रीजन में रह रहे हैं वहां के उस सीजन के जो फ्रूट्स होंगे वो आपके लिए हमेशा हेल्पफुल होंगे। उसके बावजूद भी आपके सीजनल भी हैं, बट इट मेक श्योर कि आप उसको प्रॉपरली वॉश कर रहे हैं, वो काफी देर पानी में रखे गए हैं, उसके ऊपर जो भी उसकी लेयरिंग हुई कि वो हटाई गई है। दूसरा, कोशिश करो कि कच्ची चीजें तो ना ही खाओ, जो सैलेड्स जिन लोगों को हैबिट है, हेल्दी वर्जन में भी हम खाते हैं। सो मेक श्योर कि मॉनसून सीजन में आप उनको बॉइल्ड खाओ, स्टीम्ड खाओ, ताकि कोई भी चांसेस अगर वो बैक्टीरिया के रह गए हैं ना, वो भी खत्म हो जाए। दूसरा, फ्राइड और जो आपके बाहर रोड साइड फूड होता है, मतलब देखो बहुत लोगों का बिजनेस है वो, देखो बहुत ज्यादा लोग डिपेंड करते हैं, बट आपकी अपने शरीर के प्रति भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट? तो स्ट्रीट फूड इस टाइम पे मुझे लगता है कि कम खाना चाहिए, क्योंकि वो सुबह से लेकर रात तक आपको कोई ऐसा टेम्परेचर नहीं दिया जा रहा उनको जिससे कि वो चीज मेंटेन हो रही है, तो इसीलिए वो बहुत जल्दी हिट कर देता है। तो ये चीज आपको जरूर अवॉइड करनी चाहिए। और जो एड ऑन करने को मैं बोलूंगी, जैसे मैं एक सिरप की बात कर रही थी जो मैं अपने बच्चों को भी देती थी, इस सीजन में आप बच्चों को इवन अदरवाइज भी दे सकते हो, अपार्ट फ्रॉम जो आप बहुत गर्मी का सीजन है तब आप ऑल्टरनेट डेज कर सकते हो या ट्वाइस अ वीक कर सकते हो, अदरवाइज इम्यूनिटी के लिए बड़ा हो, बूढ़ा हो या यंग हो, मुझे लगता है ये बेस्ट मेडिसिन है। आप कुछ तुलसी के पत्ते ले लो, उसको अच्छे से क्रश करके पानी में बॉइल होने दो, ठीक है? जैसे कि अगर आपको बच्चे को पानी देना है तो वो आप एक कप के हिसाब से उबलना रखोगे, आधे कप होने तक वो बॉइल होएगा, ताकि उसके जो अंदर के एसेंस है ना वो उस पानी में उतने मात्रा में चले जाए कि वो आपको असर करे। तुलसी के पत्ते आपने उबाल लिए, उसके साथ में आप उसमें काली मिर्च साबुत उबाल दो, पिसी हुई नहीं, वो बच्चों को गले में लग सकती है, बड़ों को भी। साबित काली मिर्च आपने उसके अंदर उबाल ली, उसके बाद आपने उसको छान के इसमें हल्का अदरक भी आप डाल सकते हैं, बिकॉज़ वो आपकी इम्यूनिटी के लिए वेरी गुड इन फॉर योर स्टमक ऑल्सो। हल्का सा अदरक, ये तीन चीजें उबालनी है, तुलसी के पत्ते, अदरक, काली मिर्च उबाल लिया, छानने के बाद उसमें थोड़ा सा एड ऑन कर दो शहद, बच्चों के लिए इतना इज इनफ, ठीक है? अगर आपके बच्चों या आपको लेमन का टेस्ट डेवलप है तो वो अगर बहुत गर्म है तब तो लेमन नहीं डालना, अगर आप वार्म वे में पी रहे हो हल्का सा लेमन आप डाल दो, आप ना, मतलब ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, अमेजिंग रिजल्ट्स। और लोग सबसे ज्यादा गलती मुझे पता है कहाँ पे लगता है करते हैं, कि बहुत सारी चीजें इंस्टाग्राम पे देखो, इतनी चीजें पढ़ लेंगे, सुन लेंगे, सेव भी कर लेंगे। मैं कहती हूँ 10 में से अगर आपने एक अच्छी चीज भी सुनी है ना और उसने एक को भी अप्लाई करा है, आई कैन गारंटी यू विद इन अ वीक और 10 डेज इट विल शो यू द डिफरेंस। बट मेक श्योर कि आप कर रहे हो, 100 रील्स आप सेव करते हो दिन में, उसके अंदर आपको लगता है मैं ये भी करूंगी, इतने बड़े गोल्स और इतनी सारी चीजें मत सेव, अगर दो चीज सुनी है ना एटलीस्ट उसमें से एक ट्राई कर लो अपने सच्चे दिल से, एंड इट विल गिव यू द रिजल्ट।
0: थैंक यू सो मच राधिका जी अपने वैल्यूएबल इंसाइट्स के लिए, एंड बातों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: शुरू हो जाओ।
1: हाँ तो अर्ज किया है?
0: अर्ज अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इरशाद,
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह,
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं।
0: तुम अभी इसे लायक?
1: चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स, ओटीपी सब दे दूंगा।
2: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे, मैं तो सुन के जाओ। हेलो।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
0: अर्जुन नहीं होता अर्ज, अर्ज
1: शायरी पे ध्यान लगाओ।
0: इरशाद
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
0: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा,
1: सबका ही है। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
0: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
0: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता है।
0: अरे यार वो तुम्हें कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो, अब तुम बोलते रहो मैं तो चली गई मेरी बस आ गई।
1: सुनो सुनो,

0: वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहाँ आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे एक स्पेशल गेस्ट योगा एक्सपर्ट राधिका जी, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं समर टू मॉनसून ट्रांजिशन वीक पर। सो राधिका जी, मैं आप ये जानना चाहती हूँ, हाइड्रेशन कैसे मेंटेन करें ड्यूरिंग दिस सीजन, और क्या मॉनसून में भी उतना ही पानी पीना जरूरी है जितना कि समर्स में?
1: बिल्कुल, मॉनसून में उतना ही पानी पीना जरूरी है, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि बिकॉज ऑफ वही कि ह्यूमिडिटी है, चिपचिपापन है, हमें लगता है बॉडी में ऑलरेडी इतना पानी पानी हमें लग रहा होता है, स्टिकी लग रहा होता है, और उसके बाद हमें हैबिट ही नहीं है। गर्मी में वही करें ना, हर किसी के पास बॉटल हमेशा रहेगी, कुछ ना कुछ रहेगा, बट इस वेदर में हमें लगता है कि हम इसको ना ये सोच लेते हैं हल्का ठंडा मौसम आ गया बेसिकली, तो हमारे को जरूरत नहीं लगती है उतना, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपकी बॉडी से एक्सेस वाटर ऑलरेडी बाहर जा रहा है, तभी आप स्टिकी फील कर रहे हो, राइट। आपकी स्किन में मिलियंस ऑफ पोर्स हैं जो आपकी बॉडी से पानी थोड़ा थोड़ा करके, मतलब आप वो सोचो पूरी बॉडी में से हर पोर में से आपके स्वेटिंग के उसमें बाहर आ रहा है वाटर, राइट। आप उसको बैलेंस तो करोगे ना, क्योंकि आपका ये नेचुरली आपकी, और इसके अंदर सिर्फ आपकी बॉडी से पानी नहीं निकल रहा होता, जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं आपकी बॉडी के वो भी निकलते हैं, तो उनको मेंटेन करने के लिए आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट करना बहुत जरूरी है, बट मेक श्योर कि आपकी हाइड्रेशन के फॉर्म अच्छे फॉर्म में होनी चाहिए, ना कि आप उसके अंदर कोल्ड ड्रिंक्स और जूसेस और ये चीजों को, यू नो दैट शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मींस हेल्दी ड्रिंक्स, जिसके अंदर कुछ चीजें, जैसे मैं आपको बताऊं, अभी मैं अपने बच्चों को और खुद जो लेती हूँ, जैसे अब हर कोई नारियल पानी कहते हैं बहुत अच्छे होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स का बहुत अच्छा सोर्स होता है, बट हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता, राइट। तो आप छोटी चीजों से स्टार्ट, एप्पल ले लिया, एप्पल में नेचुरल मीठापन होता है, आप उसे मिक्सी में ग्राइंड कर दो पानी के साथ में, ठीक है, और उसको पूरा अच्छे से चर्न होने दो, आपको उसका फाइबर नहीं छानना है,
0: जी
1: ठीक है। आपने उसको नेचुरल अच्छे से मिक्स कर दिया, फिर उसके अंदर थोड़ा सा पानी और ऐड हो, ठीक है, उसके अंदर आप हल्का सा सॉल्ट और लेमन डाल के पियो, मैं कह रही हूँ इतना टेस्टी वो बड़ों के लिए और बच्चों के लिए दोनों वे में। तो ऐसे सोर्सेज वी हैव टू फाइंड आउट कि जिससे आप नेचुरल वे में बजाय किसी चीनी को ऐड करें आप अच्छी चीजों से हाइड्रेशन दो। लस्सी, छाछ, बेस्टेस्ट फॉर्म लाइट, आपकी ब्लोटिंग को मैनेज करता है, आपके हर तरीके से, यू नो इट्स वेरी लाइक हेल्पफुल टू योर बॉडी। तो हेल्दी वर्जन मुझे लगता है आपके जो भी आपके लिक्विड फॉर्म के होंगे उनको ऐड ऑन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना आपकी बॉडी से मिनरल्स और वो सब निकल रहे हैं ना, तो उनको बैलेंस करना आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। साथ में आपकी हाइड्रेशन में, सिर्फ पानी को हम हाइड्रेशन नहीं बोलते, राइट, आपके जो जूसी फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर बहुत मिनरल्स होते हैं जो आपके हाइड्रेशन को बैलेंस करते हैं। आप इसके अंदर प्लम, जो आपके सीजनल मॉनसून दिल्ली एनसीआर में बहुत इजीली अवेलेबल होता है और सीजनल फ्रूट है, जामुन हो गया, आड़ू, जो नेचुरल फ्रूट इस टाइम के, वो सब एड ऑन कर दो। हाइड्रेशन में हमारे, जैसे हम वर्ड हाइड्रेशन बोलते हैं हमें लगता है हमें पानी पीना है, आप इसे हर वे में यूज कर सकते हो। आप इस मौसम में खाने के लिए, अगर मैं बोलूं हाइड्रेशन को बैलेंस करने के लिए, ड्राई सब्जियां ना खा के आप दलिया लो, पानी भी चला गया, वेजिटेबल्स चले गए, उसने आपकी बॉडी के तो मेंटेन कर दिया हाइड्रेशन को, तो आप इस तरीके से सब चीजों को एड ऑन करके अपनी हेल्थ को बेनिफिट कर सकते हैं।
0: थैंक यू सो मच राधिका जी, आपसे बहुत सारी बातें करेंगे आज, बहुत कुछ है आज आपसे जानने के लिए, लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद, तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम है। एक तेज हॉर्न के ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा सुन।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।
3: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
4: ये सड़कें तुम्हारी कहानियां नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
1: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी। 89.6 FM कुछ हटके।

0: it, so sing it. Now throw your hands up and say,
1: money, money.
2: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: चाय सिर्फ जुबान ही नहीं बल्कि दिलों को छू जाती है। होती तो सिर्फ एक कप है पर बातें दिल खोल कर हो जाती हैं।
5: पुराने दोस्त और भूले बिसरे किस्से, हंस टी स्टॉल की चाय जब भी पियो रिश्तों में नए जायके घोल जाती है।
6: यारों का 48 साल पुराना चाय का अड्डा, सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक। हंस टी स्टॉल, गोपी कॉलोनी चौक, ऋषि मार्केट, नियर लक्ष्मी नारायण मंदिर।

इसी गाने के साथ आप सभी का स्वागत है मेरे शो में, यानी कि फरीदाबाद की गलियों से। यहाँ दोस्तों अब हम बात करते हैं फरीदाबाद के गलियारे से, जहाँ वक्त चला है 10:05 और बात की जाए मौसम की तो 36 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इस वक्त बना हुआ है, जहाँ परसों के मुकाबले 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ता हुआ नजर आया। मौसम विभाग का कहना है बेशक आज और कल के दिन बादल छा सकते हैं, लेकिन गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली, यानी कि जैसे हल्की बहुत बूंदाबांदी, थोड़ी बहुत रिमझिम बारिश हुई वैसी होने की संभावना जरूर है, लेकिन गर्मी से राहत 1% भी नहीं मिलने वाली। साथ ही बात करें एक्यू की तो एक्यू आज 100 पर पहुंचा हुआ है, जहां कल परसों के दिन 90s की रो में था, आज 100 पर आ गया। ज़्यादा नहीं बढ़ा, लेकिन 100 भी बहुत ज़्यादा है। जब तक ये 40-50 सीरीज पर नहीं आता, तब तक शहर की हवा यूं ही अनहाइजेनिक रहने वाली है। तो आप सबसे यही कहूँगा कि प्लीज़ जो जो गाइडलाइंस हैं, चाहे वाटर फॉगिंग की बात की जाए, काबुल की बात की जाए, या फिर गार्बेज ना जलाने की, ये गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए ताकि शहर की हवा को साफ सुथरा बनाया जा सके। बाकी ऐसी चर्चा होती रहेंगी, उससे पहले एक और ट्रैक।

0: सुनो।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आए लेकर के शो यानी कि फरीदाबाद की गलियों में। यहाँ दोस्तों चर्चा करते हैं ट्रैफिक रूल्स के बारे में, रोड सेफ्टीज के बारे में, जहाँ दिन ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट ट्रैफिक ताओ मिल करके जागरूक करते नजर आते हैं। जहाँ कभी ट्रैफिक ताओ की तरफ से गुलाब देकर के समझाया गया तो कभी हेलमेट्स गिफ्ट करके, लेकिन लोग फिर भी नहीं समझते। रॉन्ग साइड आने की बात हो चाहे हेलमेट ना लगाना, सीट बेल्ट, ओवर स्पीडिंग करना, रेड लाइट को फॉलो ना करना, रॉन्ग साइड जाना, ये सभी चीज़ें ऐसा हो गया जैसे कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसको अपना लिया। लेकिन आप सबसे यही कहना चाहूँगा, प्लीज़ ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कीजिए जो हमारी सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं। और हमारी सुरक्षा का मतलब से हमारी बात, रूल्स फॉलो करना सिर्फ हम तक नहीं, इसका असर हमारे आजू बाजू आगे भी चलने वालों पर भी होता है। कभी भी ऐसा कुछ हादसा होता है तो उसकी जिम्मेवारी पूरी आपकी ही बनती है। इसलिए ट्रैफिक रूल्स फॉलो कीजिए जिससे कि हम अपनी और दूसरों की सुरक्षा भी प्रॉपर तरीके से कर पाए।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूं लेकर के शो यानी कि फरीदाबाद की गली। यहाँ दोस्तों हम बात करते हैं साइबर फ्रॉड्स के बारे में, जहाँ आए दिन नए साइबर फ्रॉड्स होते नजर आते हैं। आपसे एक ही बात कहूंगा कि हाँ, चले कि साइबर फ्रॉड्स में बड़े तो फंसते लेकिन कभी कभार बच्चों की वजह से भी कुछ ऐसा खतरा होता नजर आता है। होता कुछ है, गेम्स खेल रहे हैं, गेम्स पे कुछ ऐसे लिंक्स पे क्लिक कर दिया, मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं, स्क्रॉल करते कुछ ऐसी वेबसाइट पे क्लिक कर दिया। तो प्लीज बच्चों को भी जब मोबाइल दें इन चीज़ों से सावधान रखें, अवेयर रखें कि प्लीज़ बेटा ऐसे कोई भी अनवांटेड नंबर से कॉल आता है, मैसेज आता है, लिंक आते हैं, उन पर क्लिक ना करें ताकि साइबर फ्रॉड से बचा जा सके। और साइबर फ्रॉड किसी के साथ भी होता नजर आता है तो 1930 पर कॉन्टैक्ट ज़रूर करें जिससे कि साइबर फ्रॉड आपके साथ होने से बचाया जा सके। चर्चाएँ तो यूँ ही होती रहेंगी, लेकिन उससे पहले एक और खूबसूरत सा ट्रैक।

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन बिजी जाए तो किससे बात कर रहे थे? सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5,000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे एटीएम हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरेंद्र, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ फोन कॉल पर OTP, UPI, पिन कोड और CVV शेयर ना करें। ATM बूथ से पैसे निकालते समय अनजान व्यक्ति की मदद ना लें।
0: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: ऑफिस स्ट्रेस से लेकर बैक पेन तक और एंजाइटी से लेकर हेयर फॉल तक एक ही है सोल्यूशन, कायरेली आयुर्वेदिक सेंटर फरीदाबाद, जिन्हें है 35 सालों का आयुर्वेदा एक्सपीरियंस और जहां होती है हर दर्द की छुट्टी। यहां मिलती है अभ्यंगम थेरेपी, चार हाथों से की जाने वाली वार्म ऑयल थेरेपी जो स्ट्रेस को मेल्ट करे और स्किन को ग्लो दे, पोटली थेरेपी, वार्म हर्बल पोटली मसाज जो मसल पेन और स्टिफनेस को करे वैनिश, शिरोधारा थेरेपी, वार्म ऑयल का जेंटल स्ट्रीम जो माइंड को रीसेट करे और आपको दे सुकून की नींद।
5: और सिर्फ यही नहीं, दे ऑल्सो स्पेशलाइज इन पंचकर्मा ट्रीटमेंट, वेट लॉस मैनेजमेंट, पेन मैनेजमेंट, स्किन डिसऑर्डर्स, हाइपरटेंशन एंड ब्लड शुगर।
6: तो आप टेंशन किस बात की, जुड़े कायरेली आयुर्वेदिक सेंटर से, हाउस नंबर 409 सेक्टर 15 नियर गेट नंबर 3 फरीदाबाद हरियाणा। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9650680900 और पाएं 25% का डिस्काउंट। सो कम एंड ज्वाइन कायरेली आयुर्वेदिक सेंटर एंड टेक अ डीप ब्रीथ।

इसी गाने के साथ आप सभी का स्वागत है मेरे शो में यानी कि फिल्मी फिल्म। दोस्तों सिनेमा के गलियारे में चर्चाएं करने वाला हूं कि कौन कौन सी नई कहानियां सिनेमा घरों में रिलीज होने को है तैयार। कहीं होगा नई कहानियों का आगाज तो कहीं होंगे ट्रेलर टीजर आउच। फर्स्ट लुक से लेकर के नए गानों का हो रहा है इंतजार तो कहीं है नई कहानियों की ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार। सिल्वर स्क्रीन से लेकर के ओटीटी प्लेटफॉर्म तक के किस्से कहानियां आपको बताऊंगा। हिंदी पट्टी से साउथ इंडस्ट्री तक के स्टार्स की कहानियां तो कहीं होगा हॉलीवुड के सस्पेंस और एक्शन का जबरदस्त। ये सारी चर्चाएं करने वाला हूँ सिनेमा के गलियारे में। वेलकम। सारी चर्चाएं करने से पहले यानी कि सिनेमा के गलियारे में घुमाने से पहले सुना देता हूँ कुछ धमाकेदार से गाने ऑल ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: बन्नो की सहेली से लेकर दीदी का दीवाना देवर पूरे सिनेमा की अपडेट मिलेगी ओनली इन फिल्मी फ्लेवर।
1: बंदा है ये खुद से बेगाना, अजी बंदा है ये खुद से बेगाना।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौटा लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ दोस्तों अब हम बात करते हैं सिनेमा के गलियारे से राव बहादुर के टीजर के बारे में जो रिलीज किया गया, तो उसी दौरान टीजर को पसंद भी काफी किया जा रहा। फिल्म सत्यदेवा को लीड में दिखाती है जिसमें महेश बाबू के बैनों ने प्रेजेंट किया कहानी को। वेंकटेश महाडट कर रहे कहानी को। 3 जुलाई सिनेमाघरों में आने को है तैयार। टीजर में सत्यदेव का कैरेक्टर एक अनचन साइकोलॉजिकल मिस्ट्री सेटअप में है जहां रियलिटी और इमेजिनेशन ब्लर होती दिखती है। अगर साइकोलॉजिकल ड्रामा या फिर हॉरर कॉमेडी के टोनल मिक्स के रूप में कहानी को फ्रेम किया गया। टिपिकल कमर्शियल तेलुगु फिल्म लेकर के आ रहे हैं जो कि 3 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, तो इंतजार रहेगा राव बहादुर का। राव बहादुर अब क्या धमाल मचाएगी, कितनी बहादुरी से, ये देखने वाली बात होगी।

0: सुनो।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: तो अर्ज क्या है?
0: अर्ज
1: करते हैं
0: इशार।
1: जेबों में आइस क्यूब डालकर गर्मी भगाता हूँ, जेबों में आइस क्यूब डालकर गर्मी भगाता हूँ, तौलिया और बनियान पहनकर ऑफिस आता हूँ।
0: ऑफिस जाते हो या शौचालय?
1: अरे आगे सुनो।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूं लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यह हम बात करते हैं दोस्तों दृश्यम 3 के ओटीटी रिलीज के बारे में, जहां इसको ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी स्ट्रीम किया जा चुका। जहां बात की जाए इंडिया प्लस 200 कंट्रीज टेरिटरीज में स्ट्रीम की गई है। मलयालम के साथ साथ तमिल तेलुगु कन्नड़ डब्ड वर्जन भी अवेलेबल है। जहां कहा जा रहा है इस कहानी को स्ट्रीम करने के साथ ही ओटीटी पर अच्छा खासा भूचाल आते नजर आया। भूचाल इस बात का कि हर कोई एक ही होड़ में कि दृश्यम की तीसरी किस्त को देखने को हर कोई उत्सुक है। मोहनलाल फिर से जियोलॉजिकल के रोल में है और डायरेक्शन जीतू जोसफ ने की है। थिएटर रन के बाद फिल्म ने स्ट्रीट ओटीटी प्लेटफॉर्म विंडो लिया, जिसे फ्रेंचाइज का डिजिटल ऑडियंस बेस और स्ट्रांग होता नजर आया। अगर आपने नहीं देखी कहानी तो ओटीटी पर देखिए और बताइएगा जरूर कैसी लगी दृश्यम 3 की तीसरी किस्त।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: अपने बैंक या डिजिटल खातों के बारे में किसी अनजान व्यक्ति को जानकारी ना दें। किसी प्रकार के मैसेज या अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। रेडियो महारानी 89.6 द्वारा

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
1: कुछ हटके।
3: चाय सिर्फ जुबान ही नहीं बल्कि दिलों को छू जाती है। होती तो सिर्फ एक कप है पर बातें दिल खोल कर हो जाती हैं।
4: पुराने दोस्त और भूले बिसरे किस्से, हंस टी स्टॉल की चाय जब भी पियो रिश्तों में नए जायके घोल जाती है।
5: यारों का 48 साल पुराना चाय का अड्डा, सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक, हंस टी स्टॉल, गोपी कॉलोनी चौक, ऋषि मार्केट, नियर लक्ष्मी नारायण मंदिर।
6: ए जय माता जी ने हम कहीं ने कहूशू के वाह फरे वादल फरे वायरो फरे, पण एक वार बोल्या पछी मारा मित्रों आ मित्रों कदी ना फरे के यहां।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आए लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ दोस्तों अब हम बात करते हैं सिनेमा के गलियारे से आगे बढ़ते हुए दूसरी कहानी के बारे में। बात करें यहाँ पे पैदी के बारे में जो कि अच्छी खासी कमाई करते नजर आ रही है। बात की जाए तो यहाँ पर इंडियन नेट 236 करोड़ ग्रॉस, 280 ओवरसीज मिलाकर के 332 करोड़ की कलेक्शन करते नजर आ रही है पहली। बात करें ट्रेड ड्रैगन टूल्स बनते हुए कहानी अच्छा खासा धमाल मचाया है, जहां मेकर्स ने अच्छा खासा पैसा बटोरा, लोगों के दिलों पे छाप छोड़ी और पैरी का जलवा बरकरार नजर आ रहा है। 2026 की साउथ इंडस्ट्री की नंबर वन कहानी बनते नजर आ रही है। कमाल मचा रही है पैरी, अब देखते हैं पैरी और क्या धमाल मचाएगी। सिल्वर स्क्रीन के बाद ओटीटी पर आने के बाद भी मेकर्स उम्मीदें बनाए बैठे हैं कि ये कहानी और भी अच्छा खासा प्यार बटोरती नजर आने वाली है। चर्चा होती रहेंगी, देखिए उससे पहले एक और ट्रैक।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ दोस्तों बात करते हैं सिनेमा के गलियारे से आगे बढ़ते हुए हॉन्टर 3D इकॉज ऑफ द पास्ट का जे 2 कलेक्शन ही धमाल मचाते नजर आए, ये तो हमने देखा ही। बात करें अच्छी खासी कमाई करते नजर आ रहा है यहाँ पे हजारों गिनती में शोज और डेली की कमाई करोड़ों में। इस कहानी की अगर बात करें तो हॉलीवुड ने कहानी से अच्छा खासा धमाल मचाया हुआ है और अब तक की बात की जाए रिलीजिंग से लेकर के 22 करोड़ तक कमाते नजर आई। देखते हैं ये कहानी क्या धमाल मचाएगी हॉन्टेड 3D आगे आने वाले दिनों में, यानी कि इस वीकेंड पर ही अच्छा खासा प्यार बटोरती और नजर आ सकती है, रहेगा इंतजार। बाकी चर्चा होती रहेंगी, उससे पहले एक और ट्रैक।

0: घर का छोटा हूँ इसलिए निकम्मा हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई तुरेंद्र।
1: मैं घर का छोटा हूँ जिसको सब निकम्मा बोलते हैं। मम्मी बोलती है काम कर लिया कर, रोज सुबह पानी की बोतल फ्रिज में रख देता हूँ, रिमोट मैं ढूंढता हूँ, पापा का फोन मैं चार्ज करता हूँ, जब सब सोते हैं तब लाइट बंद मैं करता हूँ, जब घर में कुछ गलत होता है सब बोलते हैं इसी ने करा होगा, मेरी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता, मार्केट से सामान मैं ही लेकर आता हूँ, फिर भी सब मुझे ही कहते हैं।
2: सही कह रहा है तुरेंद्र, कितना भी कर ले, कार का छोटा बेटा रहेगा तो निकम्मा ही।

यहाँ दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं सिनेमा के गलियारों से कॉकटेल के सीक्वल के बारे में, जहाँ कृति सैनन ने रश्मिका मंदाना को क्राउड से सपोर्ट किया और उन्हें प्रोटेक्टिव एल्डर सिस्टर जैसा डिस्क्राइब भी दिखाया गया। बात करें यहाँ पे प्रमोशनल इवेंट के दौरान कुछ ऐसा ही देखने को मिला कृतिका और रश्मिका की एक क्लोज जोड़ी, शायद भी चीजें हैंडल करते नजर आए और बात की जाए यही बात वायरल होती नजर आई। कॉकटेल 2 को हाल फिलहाल थिएटर्स में रिलीज किया गया और फिल्म के प्रमोशन के दौरान कास्ट काफी बस बना रही है। अब देखते हैं ये कहानी क्या कमाल मचा रही है सिनेमा के गलियारों में। जहां बात की कॉकटेल के पहले पार्ट ने अच्छा खासा प्यार बटोरा था और सीक्वल को लेकर के फैंस बहुत ज्यादा उत्साहित नजर आए थे, लेकिन बात की जाए तो अब कॉकटेल 2 वो प्यार शायद नहीं बटोर पा रही है जो पहली कहानी ने कमाल किया था। कहाँ कमी रह गई कास्ट में या कहानी में, ये तो भाई जिन्होंने देखी

0: जल्दी और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके।
4: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
5: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
4: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
6: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
4: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
6: आवारा हूँ, आवारा।
4: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना ना भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आए हूं लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहां दोस्तों हम बात करते हैं सिनेमा के गलियारों से। अनिल शर्मा की अगर चर्चा की जाए, गदर 3 वो तभी बनाएंगे जब उन्हें कोई बेहतरीन स्क्रिप्ट मिल जाए। उनके मुताबिक गदर बॉम्ब, गदर 2 एचएम बॉम्ब थी और अब तीसरा पार्ट उससे भी धमाकेदार होना चाहिए। मतलब कि वो चर्चा जरूर कर रहे हैं, इस बारे में सोच भी रहे हैं, लेकिन जब तक स्क्रिप्ट उन्हें प्रॉपर स्ट्रॉन्ग ना मिल जाए, चाहे गदर 2 जैसे इतने सालों बाद रिलीज की गदर 3 भी है, वो वक्त लगा सकते हैं लेकिन लाना चाहते जरूर हैं। फ्रेंचाइज का नेक्स्ट चैप्टर तभी आएगा जब स्टोरी सच में बिगर फील करने वाली होगी। अब देखते हैं सनी पाजी का किरदार 3 में अगर फाइनल किया जाता है तो कहानी किस और मूर्ति दिखाई देगी।

0: देख रहे हैं।
1: तो देखने दो।
0: जल भी रहे हैं।
1: अरे तो जलने दो।
0: खुली सड़क है बाबा।
1: तो क्या हुआ पाई?
0: हाँ तो हट जाए
1: हो जाए।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे शो में, यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं नाम के बारे में। एक नई कहानी नाम टू लिव इज ऑफिशियली अनाउंस हो चुकी है, जहाँ वीर पहाड़िया और वरुण शर्मा लीड किरदारों में होंगे। महेश भट्ट इस कहानी को लेकर के आ रहे हैं, सिद्धांत सचदेवा जहाँ डायरेक्शन में नजर आएंगे। डार्क एक्शन थ्रिलर कहानी और जहाँ पे वीर एक एंग्री यंग मैन टाइप रोल में होंगे, जबकि वरुण अपने करियर के पहले नेगेटिव किरदार में नजर आएंगे। प्लॉट डिटेल्स अभी अंडर रैप रखी गई है, नहीं बताया गया कहानी किस और जाति नजर आएगी, और जहां इस कहानी में उत्सव उपाध्याय का नाम भी जुड़ता हुआ नजर आया। महेश भट्ट का नाम जुड़ने से प्रोजेक्ट को लेगेसी बैच एज मिल रही है, और वीर वरुण पेयरिंग ने क्रियोसिटी काफी बढ़ा दी है। जहां कहानी का नाम है नाम टू लिव इज वॉ, आप देखते हैं नाम ये कहानी लड़ाई से जुड़ती, जंग से जुड़ती कैसे नजर आएगी, रहेगा इंतजार। बाकी ऐसी चर्चा होती रहेंगी, उससे पहले एक और ट्रैक।

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन भी दी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5,000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती है तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे ATM हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरिंदर, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ दोस्तों हम बात करते हैं प्रीतम और पज्जू का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज किया जा चुका और जहाँ कहानी 3 जुलाई को ओटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम की जाएगी। अर्शद वारसी, वीर हिरानी, विक्रांत मैसी, बिमन ईरानी, मोना सिंह और सत्यदीप मिश्रा जैसे स्टार्स इसमें शामिल हैं। एक साइबर क्राइम कॉमेडी थ्रिलर कहानी जो कि एक ओल्ड स्कूल कॉप और टेक सेवी हैकर की ऑड पेयरिंग दिखाती नजर आई। बात करें ट्रेलर ने गोवा सेटिंग का क्राइम कॉमेडी टोन को हाईलाइट किया दिखाया गया। अर्शद पेड्रो का रोल कर रहे हैं तो वीर हिरानी प्रीतम का और विक्रांत मैसी मार्टिन के रूप में नजर आने वाले हैं जबकि बाकी स्टार सपोर्टिंग की रोल्स में नजर आएंगे। तो इंतजार है 3 जुलाई का, कहानी कब सबके सामने आएगी। बाकी ऐसी और भी चर्चाएं होती रहेंगी सिनेमा के गलियारे से, लेकिन आज की आपसे मुलाकात होगी कल के दिन, मतलब वर्किंग नेक्स्ट डे मंडे को, ऐसी और भी चर्चाओं के साथ सेम टाइम सेम जगह। तब सुन रहे रेडियो महारानी 90.6 FM कुछ हटके।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: इंटरनेट मीडिया अकाउंट या मोबाइल फोन पे पैसे की मांग पर भरोसा ना करें। किसी भी मैसेंजर ऐप पर अनजान वीडियो कॉल से सावधान रहें।
0: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: सोचो, एक आम सा लड़का जो बैंगलोर की सड़कों पर बस कंडक्टर की नौकरी करता था, क्या कभी सोच सकता था कि एक दिन पूरी दुनिया उसे थलाइवा के नाम से जानेगी। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज हम कामयाबी की उड़ान में बात कर रहे हैं सुपरस्टार थलाइवा रजनीकांत की। 12 दिसंबर 1950, यही दिन था जब बैंगलोर में शिवाजी राव गायकवाड़ का जन्म हुआ। एक सिंपल मराठी फैमिली, लिमिटेड पैसे और बचपन से ही स्ट्रगल्स का पहाड़। माँ का साया जल्दी उठ गया और जिंदगी ने बहुत जल्दी जिम्मेदारियां दे दी। कूली का काम किया, कारपेंटर बने और फिर बैंगलोर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में बस कंडक्टर की जॉब मिली। लेकिन उनके अंदर एक एक्टर छुपा था जो हर टिकट के साथ अपना सपना भी बांट रहा था। उनका टिकट देने का स्टाइल इतना अलग था कि लोग सिर्फ उन्हें देखने के लिए बस में चढ़ जाते थे। शायद तभी किस्मत ने डिसाइड कर लिया था कि ये आदमी सिर्फ बस नहीं पूरी फिल्म इंडस्ट्री चलाएगा। और कैसे बने वो सुपरस्टार, उस तक पहुंचने से पहले और भी बहुत सी कहानियां बाकी है, तो करेंगे सुपरस्टार यानी कि थलाइवा रजनीकांत के बारे में और भी बात। आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।
1: ओ चन्नती कुड़ी, ओ चन्नती कुड़ी।

नीतू जट नू पसंद होगी, गर्मी च ठंड होगी, मैं तेरा चॉकलेट तू मेरी खंड होगी, मैं भी मलंग होया तू भी मलंग होगी, तिरछी नजर तेरी आशकाली पंग होगी।

0: देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना ना गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: बच्चों को स्कूल से लाने में लेट हो जाती, इसीलिए रेड लाइट जंप करी।
1: बारिश तेज होने से पहले घर पहुंच जाओ, बस इसीलिए गाड़ी तेज चला रहा था।
2: मेरा घर तो यही पास में है, इसलिए रॉन्ग साइड से जा रहा हूँ। और अंकल मेरी तो साइकिल है, कोई गाड़ी थोड़ी है।

हर किसी की लाइफ में एक ना एक दोस्त जरूर होता है जो उसका बहुत ज्यादा करीबी होता है और कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ एक दोस्त दे देता है। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज हम कामयाबी की उड़ान में बात कर रहे हैं द वन एंड ओनली सुपरस्टार थलाइवा यानी कि रजनीकांत की। रजनीकांत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनका एक दोस्त था राज बहादुर। उन्होंने उनके अंदर के एक्टर को पहचाना। उनके दोस्त ने कहा तू बस कंडक्टर नहीं हीरो बनने के लिए पैदा हुआ है। और बस रजनीकांत ने सब कुछ दाव पर लगा दिया। चेन्नई के मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया। पैसे तक दोस्त ने दिए थे। वहीं उनकी मुलाकात हुई लेजेंडरी डायरेक्टर के बालाचंद्र से। उन्होंने रजनीकांत को देखा और कहा तमिल सीखो तुम्हारी किस्मत तमिल सिनेमा में लिखी है। फिर क्या था 1975 में फिल्म अपूर्वा रागंगल से डेब्यू हुआ। छोटा रोल था लेकिन स्क्रीन प्रेजेंस इतनी बड़ी थी कि सबकी नजर सिर्फ उन पर टिक गई। हीरो नहीं विलन नहीं कुछ अलग एक ऐसा चेहरा जो सिनेमा का रूल बुक ही बदलने वाला था। और आगे क्या हुआ करेंगे इसके बारे में बात मगर उससे पहले आप सभी के लिए रेडियो महारानी 89.6 पर ये गाना आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3 R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
1: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री में जब भी कोई इंसान आता है तो या तो वो हीरो बनता है या फिर वो विलन बनता है या फिर सपोर्टिंग रोल्स में रहता है। मगर एक इंसान अपना सिग्नेचर बना जाता है, यानी कि अपना एक स्टाइल बना जाता है, और आज हम उसी इंसान की बात कर रहे हैं। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। सिगरेट हवा में उछाल कर मुंह में पकड़ना, सनग्लासेस को स्टाइल से घुमाना, ये सिर्फ एक्टिंग नहीं थी, ये रजनीकांत का सिग्नेचर था। शुरुआत में उन्हें विलन और सपोर्टिंग रोल्स मिले, लेकिन ऑडियंस ने उन्हें हीरो बना दिया। फिल्म थी ला मुरत्तु कालई और फिर बादशाह। यहीं से रजनीकांत सिर्फ एक्टर नहीं रहे, एक फिनोमिना बन गए। साउथ इंडिया में लोग उनके पोस्टर पर दूध चढ़ाने लगे, उनके कटआउट्स मंदिर जैसे पूजे जाने लगे। उनकी फिल्म रिलीज होना मतलब फेस्टिवल, टिकट मिलना मतलब लॉटरी। उन्होंने सिर्फ सिनेमा नहीं जीता, लोगों के दिलों में परमानेंट एड्रेस बना लिया, और तब दुनिया ने कहा ये एक्टर नहीं, ये इंसान एक इमोशन है। और आगे कैसे वो सक्सेस की सीढ़ी चढ़ते चले गए, करेंगे इसके बारे में और भी बात। मगर उससे पहले आप सभी के लिए रेडियो महारानी 89.6 पर एक गाना सुनिए। इस गाने को वापस आकर कामयाबी की उड़ान में रजनीकांत जी के बारे में और भी बातें चलती रहेंगी मेरे दोस्त।

जिस इंसान को लोग भगवान की तरह पूछते हैं उसकी जिंदगी में भी अंधेरे आते हैं। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज कामयाबी की उड़ान में हम लोग बात कर रहे हैं द थलाई व द लेजेंड रजनीकांत की। 90s के एंड और साल 2000 में रजनीकांत ने स्पिरिचुअलिटी की तरफ गहरा रुख लिया। हिमालयस जाना, मेडिटेशन करना, सिंपल लाइफ जीना, ये सब उनकी रियलिटी थी। हेल्थ इश्यूज भी आए। 2011 में उनकी तबीयत इतनी खराब हुई कि पूरा देश उनके लिए दुआ कर रहा था। सिंगापुर तक ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ा। इसी बीच पॉलिटिक्स में आने की बातें भी गर्म हो रही थी। फैंस चाहते थे कि थलाइवा अब स्क्रीन नहीं, सिस्टम बदले। लेकिन रजनीकांत ने हर बार एक ही बात कही, जो होगा वक्त बताएगा। एक सुपरस्टार जो फेम के बीच भी अंदर से एक सिंपल इंसान बना रहा, और कैसे उनका जेलर तक का सफर आज भी रूल कर रहा है, करेंगे इसके बारे में बात, मगर इस गाने के बाद। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए ये गाना। आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: सड़क सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना के हैं तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later।
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।

72 प्लस की एज में भी उनकी एंट्री पर थिएटर्स फट जाते हैं। उनका डायलॉग, उनका वॉक, उनका और कुछ टाइमलेस है। बस कंडक्टर से मेगा स्टार, स्ट्रगल से सुपर स्टारडम और इंसान से लेजेंड। रजनीकांत सिर्फ नाम नहीं, एक एरा है। और कुछ लोग कहते हैं लेजेंड्स रिटायर नहीं होते, वो बस और आइकॉनिक होते जाते हैं। तो ये थी कहानी सुपरस्टार थलाईवार रजनीकांत की। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। हमारा नंबर है 9654896896। फिलहाल आप सभी के लिए रेडियो महारानी 89.6 पर ये गाना और मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलूंगा आप सभी से सोमवार से शुक्रवार शाम 5 से 8। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

गाना है विशाल डडलानी की आवाज में फ्रॉम द मूवी ब्रदर्स, और इस गाने के साथ स्वागत है शो लेकर आ गई हूँ बिजनेस अनप्लग्ड, मैं गीत हूँ। और आज एक और कहानी आपको सुनाने आई हूँ, एक और बिजनेस टाइकून की कहानी, कैसे एक बिजनेस बनता है और कैसे उसमें स्ट्रगल की जाती है, ताकि जितने भी हमारे नए एंटरप्रेन्योर्स हैं उनसे इंस्पायर हो सके और जहाँ भी रुक रहे हैं, डर रहे हैं, तो वो जो डर है वो खत्म हो जाए। तो आज की कहानी एक ऐसी है जो शायद आज के दौर में सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज जब हर दूसरा इंसान स्टार्टअप, फंडिंग, वैल्यूएशन की बात करता है, तब कहीं ना कहीं हम ये भूल जाते हैं कि असली बिजनेस की शुरुआत कहाँ से होती है। एक आइडिया से नहीं, एक डिग्री से नहीं, असल शुरुआत होती है सोच से। और आज की कहानी एक ऐसी ही सोच की है जो ना लग्जरी में पैदा हुई, ना पावर से, बल्कि सादगी और सेवा से। सोचिए जरा, 1800 के दशक का भारत, न इंटरनेट, न मॉडर्न एजुकेशन, न बड़े सपने दिखाने वाले प्लेटफॉर्म्स, और उसी दौर में एक बच्चा जन्म लेता है एक गरीब मारवाड़ी परिवार में। घर में ज्यादा कुछ नहीं, न पैसे की अबंडेंस, न रिसोर्सेज की भरमार, लेकिन उस बच्चे के भीतर एक चीज बहुत ज्यादा थी, सेल्फ रिस्पेक्ट। आज बिजनेस अनप्लग्ड में हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी जिंदगी में दौलत आई लेकिन वो कभी दौलत के पीछे नहीं भागे, जिसके पास सब कुछ हो सकता था लेकिन जिसने सब कुछ छोड़ देने का साहस रखा। और ये कहानी तब इंटरेस्टिंग बनती है जब आप ये जानते हैं कि ये इंसान सिर्फ बिजनेस से नहीं जुड़ा बल्कि देश के सबसे बड़े मूवमेंट का हिस्सा भी रहा। लेकिन अब हम किसी आंदोलन की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उस माइंडसेट की जो किसी को एंटरप्रेन्योर बनाती है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर होना सिर्फ कंपनी खड़ा करना नहीं होता, एंटरप्रेन्योर होना होता है अपने वैल्यूज पर टिके रहना, चाहे हालात कैसे भी हो। अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौट कर आऊंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जियो।

गाने का नाम है अनस्टॉपेबल और गाना है सिया की आवाज में, और इसी गाने के साथ स्वागत है। और मैं बात कर रही थी एक ऐसे नाम की जिन्होंने स्ट्रगल किया बहुत ज्यादा, लेकिन वो कभी पैसे के पीछे नहीं भागे। अब वक्त है उस नाम को लेने का जिनकी वजह से आज की कहानी हमारी बन जाती है, और उनका नाम है सेठ जमना लाल बजाज। हाँ, वही जमना लाल बजाज जिन्हें आज एक इंडस्ट्रियलिस्ट के रूप में जाना जाता है, लेकिन जिन्होंने कभी खुद को इंडस्ट्री से ऊपर नहीं समझा। 4 नवंबर 1889, राजस्थान के जयपुर रियासत का सीकर इलाका, एक गरीब मारवाड़ी परिवार, न विरासत में दौलत, न एजुकेशन में कोई बड़ा बैकग्राउंड। जमना लाल बजाज सिर्फ 4थी कक्षा तक ही पढ़े हुए थे। आज के दौर में जहाँ डिग्रीज और सर्टिफिकेट्स आइडेंटिटी बन चुके हैं, वहाँ ये फैक्ट अपने आप में बहुत बड़ा लेसन है। लेकिन जिंदगी ने उनके सामने बहुत जल्दी एक टर्निंग पॉइंट रख दिया था। अब जमना लाल बजाज सिर्फ 5 साल के थे तब वर्धा के सेठ पचराज ने उन्हें गोद ले लिया। अब सोचिए, एक गरीब किसान का बेटा अचानक एक बड़े घर का हिस्सा बन जाता है। प्रॉपर्टी, वेल्थ, रिस्पेक्ट, सब कुछ उनके सामने था। लेकिन यही वो जगह है जहाँ से उनकी असली पहचान शुरू होती है, क्योंकि जमना लाल उस वेल्थ से इम्प्रेस नहीं हुए। उनके लिए पैसा कभी एंड गोल नहीं था, और यही वजह थी कि बचपन से ही वो दूसरों से अलग दिखते रहे। एक बार सेठ बचराज के परिवार को एक शादी में जाना था। घर के सभी लोग शाही कपड़ों, गहनों में सजे हुए थे। जमना लाल से कहा गया कि वो भी हीरे पन्नों से जड़ा हार पहने, लेकिन जमना लाल ने साफ मना कर दिया। उनके लिए दिखावा हमेशा से ही बहुत अलग रहा था। ये छोटी सी बात इतनी बड़ी बन गई कि पिता पुत्र के बीच अनबन हो गई, और 17 साल की उम्र में जमना लाल घर छोड़कर चले गए। बाद में इन्होंने एक स्टैम्प पेपर पर अपने पिता को लिखकर भेजा, मैं कुछ लेकर नहीं जा रहा हूँ, तन पर जो कपड़े हैं बस वही पहने जा रहा हूँ। जिंदगी में कभी आपका एक पैसा लेने अदालत नहीं जाऊंगा। सोचिए, 17 साल का एक लड़का इतनी क्लैरिटी के साथ इतना बड़ा फैसला ले रहा है। बाद में उन्हें ढूंढा गया, मनाया गया, वो घर लौटे, लेकिन मन से वो संपत्ति का त्याग कर चुके थे। और यही वजह थी, जब विरासत में उन्हें संपत्ति मिली तो इन्होंने उसे अपने लिए नहीं, समाज के लिए इस्तेमाल किया। जमना लाल खुद को मालिक नहीं, ट्रस्टी मानते थे, और शायद यहीं से वो रास्ता शुरू होता है जो इन्हें एक इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं बनाता बल्कि एक इंस्पिरेशन बनाता है। लेकिन ये सब एक दिन में नहीं हुआ, इसके पीछे था उनका बचपन, उनकी एडुकेशन और वो वैल्यूज जो इन्होंने कम उम्र में सीख ली थी। और अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियरा, आपकी एक छोटी सी मुस्कान किसी का दिन बना सकती है, तो आज से ही स्माइल शेयर करो और हैप्पीनेस

वंस अगेन वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू बिजनेस अनप्लग्ड और मैं बात कर रही हूँ जमना लाल बजाज के बारे में। सिर्फ अमीर परिवार में पले बड़े इंसान नहीं थे, वो एक ऐसे इंसान थे जो हर चीज को यूज नहीं क्वेश्चन करते थे। अब जिंदगी के इस मोड़ पर उनके सामने सब कुछ था, पैसा, पहचान, सुरक्षा, लेकिन इनके अंदर एक डिस्कम्फर्ट था। इन्हें लगता था कि कम्फर्ट बहुत डेंजरस चीज है क्योंकि कम्फर्ट सवाल पूछने से रोक देती है और जमना लाल बजाज सवाल पूछने वालों में से थे। यहीं से उनकी थिंकिंग सिर्फ पर्सनल ग्रोथ तक सीमित नहीं रही, इन्होंने खुद से पूछा, अगर मेरे पास इतना है तो समाज के पास क्यों नहीं, आज मैं सुरक्षित हूं तो बाकी लोग क्यों नहीं। यही वो फेज था जहां जमना लाल बिजनेसमैन बनने से पहले ह्यूमन बीइंग बने। उन्होंने अपने पैसे को पावर नहीं बनाया, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई और यही माइंडसेट इन्हें महात्मा गांधी के करीब ले गया। महात्मा गांधी से इनका रिश्ता फैन फॉलोअर वाला नहीं था, वो रिलेशन था वैल्यूज का, ट्रस्ट का और डिसिप्लिन का। गांधी जी ने इन्हें सिखाया कि वेल्थ का मतलब कलेक्ट करना नहीं, सर्कुलेट करना होता है और यहीं से जमना लाल के डिसीजंस बदलने लगे। वो सोचने लगे कि बिजनेस अगर करना है तो ऐसा जो सिर्फ बैलेंस शीट में नहीं लोगों की जिंदगी में भी इम्पैक्ट छोड़े। इनके लिए प्रॉफिट गोल नहीं था, आउटकम था, गोल था सेल्फ रिलायंस। यही सोच आगे चलकर बजाज ग्रुप की बैकबोन बनी। लेकिन अभी तक एक चीज मिसिंग है, सोच तो बन गई, वैल्यूज भी क्लियर है, पर सवाल ये है इस सोच को स्ट्रक्चर कब मिला, ये आइडियाज एक्चुअल कंपनी में कन्वर्ट कब हुआ और बजाज सिर्फ एक नाम नहीं एक लेगेसी कब बना। कहानी बताऊंगी आपको, लेकिन वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटूंगी, शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए U150,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। OTP मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

वंस अगेन वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू बिजनेस अनप्लग्ड। मैं गीत हूँ और अब बात करते हैं बिजनेस की। नो इमोशन, नो इंस्पिरेशन कोट्स, ओनली स्ट्रक्चर, डेटा और रियलिटी। जमुना लाल बजाज का नाम आज बजाज ग्रुप से जुड़ा है, लेकिन ये ग्रुप एक दिन में नहीं बना। 1915 के आसपास जमुना लाल बजाज ने कॉटन ट्रेडिंग से शुरुआत की। रॉ कॉटन खरीदना, उसकी प्रोसेसिंग और फिर रीसेल। सिंपल बिजनेस, हाई वॉल्यूम, लो मार्जिन, कोई लग्जरी नहीं, कोई ब्रांड बिल्डिंग नहीं। उस समय भारत में कॉटन सबसे ज्यादा कॉमन था और जमुना लाल बजाज ने वही चुना। 1926 में इन्होंने बजाज स्पाइनिंग एंड वेविंग मिल्स की नींव रखी और यहीं से मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री हुई। अब ध्यान दीजिए, ये कोई ग्लैमरस सेक्टर नहीं था। टेक्सटाइल बिजनेस मतलब हैवी कैपिटल, लेबर इश्यूज और स्लिम मार्जिन। लेकिन जमुना लाल बजाज ने शॉर्ट टर्म प्रॉफिट नहीं देखा, इन्होंने कैपेसिटी बिल्ड की। 1930s-40s में बजाज ग्रुप का फोकस रहा टेक्सटाइल, शुगर, पावर। डाइवर्सिफिकेशन नहीं, कंट्रोल एक्सपेंशन। हर बिजनेस फिजिकल एसिड बेस्ड था, नो टेक, नो कंज्यूमर ब्रांड। आज का बजाज ऑटो तब पिक्चर में ही नहीं था। टर्नओवर की बात करें तो प्री इंडिपेंडेंस एरा में एग्जैक्ट पब्लिक नंबर्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री एस्टिमेट के मुताबिक 1940 तक बजाज इंटरप्राइजेज सेंट्रल इंडिया में मेजर टेक्सटाइल एम्प्लॉय बन चुका था। इंडिपेंडेंस के बाद ग्रुप ने स्ट्रक्चर्ड एक्सपेंशन शुरू की। 1960 से 1970 बजाज ऑटो का राइज हुआ, लेकिन वो चैप्टर जमुना लाल के बाद का है। जमुना लाल के टाइम तक बिजनेस का स्केल था, ब्रांड नहीं, ये समझना जरूरी है। इनका कंट्रीब्यूशन कंज्यूमर फेम नहीं था, फाउंडेशन था, फैक्ट्रीज थी, सप्लाई चेन्स थी, सिस्टम्स थे, और ये सब हाई रिस्क एनवायरमेंट में बना। ब्रिटिश पॉलिटिक, रॉ मटेरियल फ्लक्चुएशन, लेबर अनरेस्ट और जीरो गवर्नमेंट बैकिंग। और अब तक एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ, उनका बिजनेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट मशीन नहीं। मार्जिन्स थिन थे, ग्रोथ स्लो थी, रिटर्न स्टेडी था, फ्लैशी नहीं, और शायद यही वजह है कि बजाज ग्रुप सर्वाइव कर पाया। लेकिन सर्वाइवल इजी नहीं था, और क्यों इजी नहीं था, क्या स्ट्रगल थे, ये मैं बताऊंगी आपको, लेकिन गाने के बाद। गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

वंस अगेन वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू बिजनेस अनप्लग्ड और मैं गीत हूँ। हम बात कर रहे हैं जमुना लाल बजाज के बारे में। अब यहाँ पर स्ट्रगल के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि कहते हैं कि हर कहानी से सिर्फ मोटिवेशन नहीं मिलता बल्कि हमें एक रिस्क फैक्टर भी पता चलता है, फेलियर्स भी पता लगते हैं। जमुना लाल बजाज का बिजनेस कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं था। 1915 के बाद इन्होंने कॉटन ट्रेडिंग में काम शुरू किया, रॉ कॉटन खरीदना, प्रोसेसिंग कराना और रीसेल। सिंपल सुनने में, लेकिन उस टाइम ये बिजनेस सबसे ज्यादा अनस्टेबल था। प्राइस रोज बदलता था, वेदर पर डिपेंड करता था, ब्रिटिश एक्सपोर्ट पॉलिटिक्स अनप्रेडिक्टेबल थी, प्रॉफिट मार्जिन बहुत थिन। 1926 में इन्होंने बजाज स्पिनिंग एंड वेविंग मिल्स शुरू की और लेबर उस टाइम में सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर था। स्ट्राइक्स कॉमन थी, प्रोडक्टिविटी अनसर्टेन थी, फैक्ट्रीज चलाना रोमांटिक नहीं था, डेली हेडेक था, पावर सप्लाई इरेगुलर, ट्रांसपोर्ट वीक, फाइनेंस लिमिटेड, बैंक इजिली लोन नहीं देते थे। इसका मतलब ये था ग्रोथ स्लो होगी और स्लो ग्रोथ मींस प्रेशर। 1930s में ग्लोबल डिप्रेशन का असर भारत तक आया, डिमांड गिर गई, प्राइस कोलैप्स हुए, टेक्सटाइल सेक्टर हिट हुआ, लॉस हुआ, लेकिन फैक्ट्रीज बंद नहीं की गई, बिकॉज अगर बंद करते तो मजदूर बेरोजगार होते। बिजनेस डिसीजन वर्सेस सोशल कॉन्सिक्वेंसेस और ये कॉन्फ्लिक्ट था। शुगर मिल का एक्सपेरिमेंट भी इजी नहीं था, सीजनल बिजनेस, वेदर डिपेंडेंट, लॉजिस्टिक हैवी और कैश फ्लो अनइवन। आज हम टर्नओवर्स नंबर की बात करते हैं, 280 अरब 25 कंपनियां, लेकिन जमुना लाल के समय में ये नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। उस समय सक्सेस का मतलब था फैक्ट्रीज चल रही है या नहीं, सैलरी जा रही है या नहीं। तो उस टाइम सिस्टम को सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन ये सर्वाइवल इन्हें पर्सनली बहुत हैवी पड़ा। पॉलिटिक्स प्रेशर, जेल विजिट, फाइनेंशियल स्ट्रेस, और यहीं से शुरू होता है इनका सबसे टफ फेज, जहां बिजनेस, फ्रीडम स्ट्रगल और पर्सनल सेक्रीफाइस तीनों एक साथ टकरा जाते हैं, और यही है इनकी असली स्ट्रगल। वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: साथ फिर से स्वागत है, शो है बिजनेस अनप्लग्ड और बात हो रही है जमना लाल बजाज के बारे में। ना इन्होंने कोई सीक्रेट फॉर्मूला खोजा, ना ही किसी ओवरनाइट आइडिया पर करोड़ बना लिए। इन्होंने बस तीन चीजें कंसिस्टेंटली की। पहली बार बिजनेस को स्लो रखा, नो हरी नो हाइप नो शॉर्टकट्स। आज हम स्टार्टअप कल्चर में फास्ट ग्रोथ फास्ट वैल्यूएशन की बात करते हैं, लेकिन बजाज की नींव पेशेंस पर रखी गई थी। दूसरी, उन्होंने बिजनेस को रियल एसेट्स पर खड़ा किया, फैक्ट्रीज मशीन पीपल, नो बजवर्ड्स नो ट्रेंड्स। और यही वजह है कि बजाज सिर्फ ब्रांड नहीं इंस्टीट्यूशन बना। इन्होंने ओनरशिप को ईगो नहीं बनाया, इनके लिए बिजनेस स्टेटस सिंबल नहीं था, वो खुद को सिस्टम का केयर टेकर मानते थे और सिस्टम जनरेशन के लिए बनाया जाता है, इंस्टाग्राम के लिए नहीं। आज जब हम बजाज ग्रुप की बात करते हैं तो बात करते हैं सिर्फ स्कूटर्स या फैंस की नहीं, आज बजाज ग्रुप में 25 प्लस कंपनीज है, ऑटो फाइनेंस इलेक्ट्रिकल्स एनर्जी। ये 100 साल के कंसिस्टेंट डिसीजन का रिजल्ट है। और ये भी याद रखना जरूरी है, ये जर्नी परफेक्ट नहीं थी, लॉस हुए, ग्राउंड स्लो रही, प्रेशर रहा, लेकिन डायरेक्शन क्लियर थी और यही क्लैरिटी बिजनेस को टिकाऊ बनाती है। अगर आप एक नए एंटरप्रेन्योर हैं तो इस कहानी से एक सिंपल टेक अवे रखिए, आपको सबसे पहले यूनिकॉर्न नहीं बनना है, आपको सबसे पहले सरवाइव करना है। सिस्टम बनाइए, फाउंडेशन मजबूत रखिए, ग्रोथ को टाइम दीजिए। जमना लाल बजाज की कहानी ये नहीं कहती सब छोड़ दो और महान बन जाओ, ये कहती है काम करो, धीरे करो लेकिन सही करो, और जब काम सही होता है तो रिजल्ट अपने आप बोलता है। आज बजाज ग्रुप उसका प्रूफ है। बिजनेस अनप्लग में आप मुझे सुन रहे थे यानी कि गीत को, अब वक्त है इजाजत लेने का। आप सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके, कीप स्माइलिंग एंड कीप ग्रोइंग।
1: दो दो कोड़े महगनानी, चार जी वहगनानी, उत्ते नू मैं शीशे चक्कियां, टाइम लगू मिटने नू सानू थले।

क्या कभी सोचा है आज हम एक स्विच दबाते हैं और घर रोशनी से भर जाता है। लेकिन एक वक्त था जब रात का मतलब होता था गहरा अंधेरा, और उस अंधेरे से लड़ने के लिए एक छोटी सी चीज हुआ करती थी जिसे कहा जाता है लालटेन। वो कहा है कि अंधेरों से दोस्ती भी थी, रोशनी का सहारा भी था। एक छोटी सी लालटेन में पूरा जमाना हमारा भी था। रेडियो महारानी 89.6 FM पर मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ, और शो लेकर आ गई हूँ कल्चर कारवा, जहाँ हम ढूंढ कर लाते हैं कल्चर की वो कहानियाँ जो वक्त के साथ कहीं धुंधली सी हो गई है। और आज की कहानी है लालटेन, रोशनी की वो साथी जिसने सदियों तक इंसान का साथ दिया। अब बात कर रहे हैं लालटेन की, तो आइए चलिए जानते हैं आखिर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। जरा सोचिए, हजारों साल पहले जब बिजली का नामो निशान भी नहीं था, तब लोग रोशनी के लिए मशाल दिए और तेल के दीपक का इस्तेमाल करते थे। लेकिन उस समय सफर के दौरान हवा से बचने के लिए एक ऐसा दिया चाहिए था जो हवा में भी जले। इसी जरूरत ने जन्म दिया लालटेन को। और हिस्ट्री तो ये भी बताती है कि 16th टू 17th सेंचुरी यूरोप में मेटल फ्रेम और ग्लास वाली लालटेन बनाई गई, जिसके अंदर तेल या केरोसिन का दिया जलता था। लेकिन धीरे धीरे ये इनोवेशन दुनिया भर में फैल गया, और फिर बस इंडिया के गांव-गांव की पहचान बन गया। वो कहा है कि छोटी सी लौ थी मगर हौसला कम नहीं था, लालटेन ने सिखाया अंधेरा कभी भी दम नहीं था। इसी के साथ अब वक्त हो गया है एक छोटी सी म्यूजिक ब्रेक का, वापस आकर जानेंगे इंडिया में लालटेन का सफर। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: be aware. ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना।
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

रेडियो महारानी 89.6 FM पर मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो लेकर आई हूँ कल्चर कारवा, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं लालटेन की। तो आइए चलिए जानते हैं इंडिया में लालटेन का सफर। इंडिया में लालटेन का असली सफर शुरू हुआ 19th सेंचुरी में, जब केरोसिन ऑयल सस्ता और आसानी से मिलने लगा। अगर बात करें उस वक्त की, उस वक्त गांव में ना बिजली थी ना स्ट्रीट लाइट्स, तो हर घर में एक लालटेन होती थी। रात को बच्चे उसी की रोशनी में पढ़ते थे, माँ उसी के सहारे खाना बनाती थी और दादा दादी उसी के नीचे बैठकर कहानियां सुनाते थे। वो कहा है कि एक लौ थी जो हर घर में जलती थी, लालटेन थी मगर जिसे उम्मीद पलती थी। तो चलिए जानते हैं रेलवे और लालटेन का सार। अगर आप पुराने इंडियन रेलवे की फोटोज देखें तो गार्ड के हाथ में एक लाल और हरी लालटेन जरूर नजर आती है, क्योंकि कहा जाता है कि ट्रेन सिग्नल देने के लिए रेलवे स्टाफ लालटेन का इस्तेमाल करता था। रेड लाइट का मतलब था रुक जाओ और ग्रीन लाइट का मतलब था रास्ता साफ है। यानी एक छोटी सी लालटेन हजारों यात्रियों की सुरक्षा का जिम्मा संभालती थी। लालटेन से जुड़ी और भी कहानियां हैं, लेकिन जानेंगे इस म्यूजिक ब्रेक के बाद। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यह होगी साइबर क्राइम से जान।
1: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा, पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए यू वन 50,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। ओटीपी मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।
2: सर, आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
3: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
0: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी। लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहाँ, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
3: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

89.6 FM पर मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो लेकर आई हूँ कल्चर कारवा, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं लालटेन की। तो आइए चलिए जानते हैं लालटेन और पढ़ाई का रिश्ता। एक जमाना था जब भारत की लाखों बच्ची लालटेन की रोशनी में पढ़कर बड़ी हुई। बिजली नहीं थी लेकिन सपने थे, और वो सपने लालटेन की हल्की सी रोशनी में भी चमकते थे। वो कहा है कि रोशनी कम थी मगर हिम्मत कम नहीं थी, लालटेन के नीचे बैठे बच्चे कल का सूरज वही थे। अब लालटेन की बात कर रहे हैं तो आइए चलिए जानते हैं लालटेन इन कल्चर और सिनेमा। बात करें इंडियन सिनेमा और लिटरेचर में तो लालटेन का एक अलग ही चार्म रहा है। गांव की रात, खेतों की पगडंडी और हाथ में जलती हुई लालटेन, ये सीन सैकड़ों फिल्मों और कहानियों का हिस्सा रहा है। लालटेन सिर्फ रोशनी नहीं थी, वो नॉस्टैल्जिया थी, एक एहसास थी। अब बात कर रहे हैं लालटेन की तो आइए चलिए इसके पीछे का साइंस भी जानते हैं। लालटेन का डिजाइन भी काफी इंटरेस्टिंग होता है। ग्लास चिमनी हवा को कंट्रोल करती है जिससे फ्लेम स्टेडी और ब्राइट जलती है। और बात करें नीचे के मेटल की तो मेटल टैंक केरोसिन का फ्यूल देता है, यानी सिंपल डिजाइन लेकिन ब्रिलियंट इंजीनियरिंग। अब बात कर रहे हैं इसकी तो इससे जुड़े हुए फेस्टिवल्स के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल वॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।
2: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
3: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
2: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
0: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी। लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
4: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

89.6 FM पर मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है कल्चर कारवा, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं लालटेन की। तो आइए चलिए जानते हैं फेस्टिवल और ट्रेडिशन में किस तरह से अपनी भूमिका निभाता था लालटेन। इंडिया के कई फेस्टिवल में भी लालटेन का यूज होता है। कहीं लोग दिवाली पर डेकोरेटिव लैंटर्न्स जलाते हैं, तो कहीं गांव में आज भी रात की रस्में लालटेन की रोशनी में होती हैं। ये सिर्फ एक लैंप नहीं, कल्चर का एक हिस्सा है। तो चलिए आइए जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी आने के बाद आखिर क्या हुआ लालटेन का। 20वीं सेंचुरी के बाद जब बिजली गांव-गांव में पहुंचने लगी तो धीरे धीरे लालटेन का यूज कम होने लगा, लेकिन आज भी कई गाँव में और इमरजेंसी सिचुएशंस में लालटेन अभी भी काम आती है। और कुछ लोग तो सिर्फ नॉस्टैल्जिया के लिए भी लालटेन जलाते हैं। वो कहा है, वक्त बदला, शहर बदली, रोशनी के तरीके बदल गए, पर लालटेन की लौ में छिपे किस्से कभी नहीं बदल पाए। अब इतनी सारी बात करी है लालटेन से जुड़ी हुई, तो चलिए इमोशनल कनेक्शन के बारे में भी बात कर ही लेते हैं। सच कहें तो लालटेन सिर्फ एक लाइट सोर्स नहीं थी, वो गांव की रातों की साथी थी, कहानियों की गवाह थी और सपनों की रखवाली थी। वो कहा है कि रोशनी आज भी है, मगर वो बात कहाँ। लालटेन की लौ में जो जादू था वो आज की रात में कहाँ। और इसी के साथ आज हमने बात की कल्चर कारवा में लालटेन की। कल्चर कारवा, जहाँ हम ढूंढ कर लाते हैं भारत की छोटी छोटी चीजों में छुपी बड़ी कहानियाँ। फिर मिलेंगे एक नए सफर के साथ, तब तक याद रखिए कि कभी कभी छोटी सी लौ भी जिंदगी को रोशन कर देती है। दिस इज योर आरजे अंजलि साइनिंग ऑफ।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: मैं मस्त म्यूजिक सुनते हुए रोड क्रॉस कर रही थी, एटीट्यूड फुल, ध्यान जीरो। तभी एक बाइक वाले भैया ब्रेक मार के बोले, दीदी रोड क्रॉस कर रहे हो या रनवे पे कैटवॉक? नहीं, मैं तो इतना शॉक्ड हुई कि मेरे एक्सप्रेशन देख कर ट्रैफिक लाइट भी शर्मा के ग्रीन से रेड हो गई। मगर उस दिन समझ आया, फोन पॉकेट में, ध्यान रोड पे और स्पीड जीरो पे रखो। ज़ीब्रा क्रॉसिंग का यूज करो, लेफ्ट राइट लेफ्ट देखो, राइडर्स हेलमेट टाइट और ड्राइवर्स सीट बेल्ट राइट। हंसी मजाक अपनी जगह पर, सेफ्टी सबसे ऊपर।
0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती है सांसें यहाँ, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
2: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

सिमेट्री में आ रहे थे आज बादल। पूरे दिन भर ऐसा ही लगा कि अब होगी बारिश और सेक्टर 21 साइड तो फिर भी थोड़े से छींटे भी पड़े, वो मुश्किल से एक मिनट के छींटे। बस वो एक बादल आया था कारा सा, उसने बारिश के दो चार छींटे गिराए और फिर उसके बाद फरीदाबाद में आगे निकल गया। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। ओ भाई लोग, आज क्या है याद कीजिए, आज है फ्राइडे, दैट डे ऑफ द वीक जब सबके मन में एक चीज होती है कि चलो अब दो दिन की तो छुट्टी मिलेगी। मगर अगर सैटरडे को आपकी छुट्टी नहीं है, डोंट वरी, आपका दर्द अच्छे से समझ सकता हूँ। मैं भी आता हूँ सैटरडे को ऑफिस और हम लोग और भी काम करते हैं, मतलब मंडे टू फ्राइडे तो शाम को 5 से 8 आप सभी के साथ बातें करते हैं, बट उसके अलावा सैटरडे संडे और भी काम होते हैं। खैर, ये दर्द दुख और पीड़ा ये सबकी लाइफ में है, किसकी लाइफ में नहीं है, और जिसकी लाइफ में नहीं है उसको जीने का क्या ही पता कि मजा क्या होता है। चलिए इसी के साथ साथ आईफोन के शौकीन लोगों के लिए एक बुरी खबर है, क्या है वो बुरी खबर, करेंगे उसके बारे में बात। और आज मैं फिल्मों के बारे में थोड़ी सी ज़्यादा बात करना चाहता हूँ, क्योंकि ना देखो फिल्में एक से बढ़कर एक आने वाली है, उसके टीजर्स ट्रेलर सब कुछ आ रहे हैं, तो इन सब के बारे में करूँगा बात। और अगर इसी बीच आप लोगों को मुझसे कोई भी बात करनी है, फरीदाबाद से रिलेटेड कोई भी बात करनी है, अगर आपको कोई परेशानी हो रही है फरीदाबाद में किसी भी चीज़ को लेकर, आप लोग वो चीज़ मेरे साथ शेयर कर सकते हो। कैसे शेयर कर सकते हो, मेरा एक नंबर है, सिंपल सा नंबर है, ज़रा याद कर लीजिएगा, 9654, बस इतना याद कर लो, बाकी तो हमारी फ्रीक्वेंसी है 9654896896। सिंपल सा नंबर है, इस पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। रेडियो महारानी के इंस्टा हैंडल पर भी आप लोग आके मैसेज कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं फरीदाबाद की और भी ज़्यादा, तो गर्मी बढ़ रही है, पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। चलिए गर्मी के बारे में करेंगे बात, और मेरे पास एक बहुत ही अच्छा किस्सा है, सुनाऊंगा आप सभी को मगर इस गाने के बाद।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाए और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

मेरी शाम हंसी है और सुबह हंसी और शाम हंसी तब होती जब मॉनसून के प्री शावर्स हो जाते फरीदाबाद में, मजा ही तो आ जाता। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ। आप लोग सोच रहे हो कि शाम हो गई है, गौरव क्या बातें कर रहा है, तो मैं बातें कर रहा हूं जो वो ये है कि मौसम कभी भी बदल सकता है क्योंकि प्री मॉनसून शावर्स होते हैं पहले, मतलब मानसून के आने से पहले, दस्तक देने से पहले थोड़ी थोड़ी बारिश होनी शुरू होती है। जैसे आज बादल आए, काले बादल आए थोड़े बहुत और वो हल्की हल्की छींटे मार के चले गए। और मैं आप सभी के साथ ये बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कहा जा रहा है कि मानसून ट्यूसडे या वेंसडे तक पक्का आ जाएगा दिल्ली NCR में और इस बार जोरदार वाली दस्तक देगा जैसे कि उसने मुंबई में दस्तक दी थी। तो बस हम इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। और अगर बात करें आज की, तो हो सकता है कि अभी से एक या दो घंटे के बाद भी आप लोगों को हल्की फुल्की बौछार मिल सकती है, मतलब हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल सकती है। वैसे उसका हम लोग, मैं पक्के तौर पे नहीं कह रहा, बट स्टिल मौसम विभाग का ऐसा कहना है। अगर आप अभी इस टाइम गूगल खोल के देखोगे, गूगल पे लिखो फरीदाबाद वेदर, तो आप लोगों को दिख जाएगा 7 से 8 बजे के बीच में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। और अगर बात करें मानसून की, तो मानसून ने दस्तक देनी है वेंसडे तक ही, मतलब अगले वेंसडे तक बारिश होगी। फिर उसके बाद थर्सडे को हैवी थंडरस्टॉर्म लिखा है जिसमें 80 से 90% चांसेस है कि बारिश तो होनी ही होनी है। तो मैं तो बस इस चीज़ का वेट कर रहा हूँ क्योंकि देखो मॉनसून जब आएगा तो अपने रंग दिखाएगा और 1 जुलाई से मॉनसून का आगाज हो जाएगा। इस बार बस इसी चीज़ का इंतज़ार है क्योंकि अब ये गर्मी झेली नहीं जा रही, मगर वो वाली गर्मी ना आ जाए कहीं कि मॉनसून के एक दिन की बारिश हो रही है, दो दिन धूप निकल रही है, फिर तो और भी ज़्यादा गर्मी लगती है। वो तो सही भी नहीं जाती क्योंकि उसमें पसीने बहुत ज़्यादा आते हैं, है कि नहीं। चलिए अभी आप लोग फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए। और गर्मी की बात हुई है तो बताऊँगा आपको, एक ऐसी कंट्री जहाँ पर ना पारा 40 डिग्री पे पहुँचा और वहाँ हाहाकार मच गया। कौन सी है वो कंट्री, करेंगे इसके बारे में बात मगर इस गाने के बाद। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए मिक्स मैशअप गाना खैरियत पल पल दिल के पास। सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन

एंड आई एम अनस्टॉपेबल एज वेल। और अनस्टॉपेबल तो एक और चीज है और वो है गर्मी। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। एंड पता है क्या हो रहा है, एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर अभी सिर्फ 40 डिग्री टेम्परेचर पहुँचा और वहाँ हाहाकार मच गया। लोगों के बीच में होड़ मच चुकी है किस चीज़ के लिए, एसी खरीदने के लिए। मतलब अभी तक एसी नहीं थे क्या उनके घर पर। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं जो बात कर रहा हूँ वो मैं बात कर रहा हूँ फ्रांस की। फ्रांस में हीट वेव का अलर्ट जारी हुआ, बस सिर्फ हीट वेव का अलर्ट जारी हुआ। उसके बाद एक ऐसी वीडियो वायरल हुई है ना, जिसमें एक स्टोर है, ऑफलाइन स्टोर है, जैसे हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऑफलाइन स्टोर्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचते हैं, वहाँ पर लाइन लगी पहले, और जैसे ही दरवाजे खुले तो लोग टूट पड़े एसी खरीदने के लिए। और छीना झपटी होने लगी, मतलब जितने भी कूलिंग डिवाइस थे, फ्रिज था भले ही, एसी था या फिर कूलर ही था, सब लोग खरीदने के लिए टूट पड़े और सारे के सारे दुकानों से सामान खत्म हो चुका है। क्योंकि देखो वहाँ पर ऑनलाइन का मुझे सिस्टम नहीं पता, बट ऑफलाइन बहुत सारे लोग ऑफलाइन वहाँ प्रेफर करते हैं। एंड यही हुआ कि फ्रांस में हीट वेव का जस्ट एक अलर्ट जारी किया गया। जैसे हमारे यहाँ तो रोज़ ही होता है, गर्मियों में मई में और जून में हम सबके पास ना जाने कितने सारे हीट वेव अलर्ट आए थे। हम लोगों ने क्या एसी खरीदने पहुँच गए थे? नहीं ना, क्योंकि एसी पहले से लगा हुआ था हमारे घर पर। खैर मैं ये बोल रहा हूँ कि हम इंडियंस जो है ना, वो ना हर चीज़ को झेल सकते हैं। आप सब मानो मेरी बात, हर चीज़ को झेल सकते हैं। जब हम नुक्कड़ पर खड़े हुए वो पकौड़े खा लेते हैं, तो फिर हम क्या क्या चीज़ें नहीं झेल सकते। चलो करेंगे इसके बारे में बात, मगर एक गाने के बाद। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए गाना चला रहा हूँ। गाने का नाम है वशीकरण। सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: से झनकार सी है दिल के तार में तब से।
1: आज मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कोरोना का वो दौर जब सब लोग अपने घर में बंद थे, मगर उनमें से भी कुछ सिकंदर घर के बाहर निकलने को पूरी तरीके से तैयार बैठे थे। वो कह रहे थे कि कोरोना हमारा क्या ही बिगाड़ेगा, जब लेड MSG मिला था मैगी में तब हमारा कुछ नहीं बिगड़ा, तो फिर कोरोना क्या बिगाड़ लेगा। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। हम लोगों को ना ये वाला नेचर अपना, ये वाला बिहेवियर खत्म करना पड़ेगा या हटाना पड़ेगा, दूर फेंकना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों के अंदर ये चीज़ आ गई है। आप मानोगे नहीं, आप लोग अगर बचपन के दिन याद करो अपने, जब हम लोग सुबह सुबह खेलने निकल पड़ते थे, गर्मी की छुट्टियों की बात कर रहा हूं मैं, सुबह सुबह खेलने निकल पड़ते थे, सड़क के किनारे कोई नलका दिख जाता था या मटका दिख जाता था, उसमें से पानी पी लेते थे। RO का नाम तो दूर दूर तक नहीं था। और फिर उसके बाद बॉडी का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग था कि हम लोग पत्थर मिट्टी कुछ भी पचा सकते थे। तो ये सब चीज़ें हमारे साथ होती आई है बहुत टाइम से। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम इंडियंस का जो एक मेटाबॉलिक सिस्टम है प्लस इम्यून सिस्टम है, ये बहुत बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। गर्मी हो वो हम झेल लेते हैं, हैवी बारिश हो वो हम झेल लेते हैं, हैवी सर्दियां हो वो हम झेल लेते हैं। ऐसी क्या चीज़ बनी है मार्केट में जो चीज़ हम नहीं झेल सकते। कोरोना आया था साल 2020 में, सब लोग परेशान थे, ऑल ओवर वर्ल्ड हाहाकार मचा हुआ था, मगर इंडिया में लोगों ने ना जाने क्या क्या नहीं किया। जब मोदी जी ने कहा कि थाली बजाओ, लोग घर के बाहर निकल के थाली बजाने लग गए, लोग मिलकर एक साथ इकट्ठे होकर थाली बजाने लग गए। जब मोदी जी ने कहा दिया जलाओ, तो लोगों ने पटाखे जलाने शुरू कर दिए। तो ये सब चीज़ें हम इंडियंस ही कर सकते हैं, एंड इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स, ये बात तो हम सबको माननी पड़ेगी, आप लोग भी मानते ही होंगे। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए। वापस आकर बात करेंगे एक बुरी खबर की जो है आईफोन यूजर्स के लिए। क्या है वो बुरी खबर बताऊंगा मगर इस गाने के बाद।

0: दिन में बकवास है।
1: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है, और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
2: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
4: मैं धूम्रपान का आदि हूँ, भोले को भांग चढ़ाता हूँ, प्रसाद में चढ़ाई भांग को फिर मैं ही लेके जाता हूँ, फिर यार दोस्त बुलाता हूँ, ऐसा माहौल बनाता हूँ, चिलम में भर के माल को मैं फिल्म

0: हूँ जो चाहे वो कर सकता हूँ, सब छोड़ के सारे बुरे कर्म लो मानवता पर चलता हूँ। क्यों इंतजार करे हम सब श्री कृष्ण के अवतार का, सब मिलकर हम निर्माण करे नव सतयुग से समाज का, जहाँ पशु को पूजा जाता हो और मांस कोई ना खाता हो, हर मानव में मानवता हो ना मानवता दिखावा हो।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके।
4: हाँ तो अर्ज किया है।
5: आहो, अर्ज होता है अर्ज।
4: कर रहे हैं आप, सुनो तो
5: इरशाद।
4: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
5: तुम्हारे नंबर पे?
4: हाँ जी।
5: अच्छा,
4: और उन्होंने पूछा क्या?
5: क्या पूछा?
4: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
5: क्या बात कर रहे हो?
4: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
5: अच्छा,
4: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
5: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
4: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
5: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
4: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
5: बाय।
4: सुनो तो, कहाँ चली?

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई तुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन भी दी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती है तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती है तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे ATM हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरेंद्र, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

क्या आपको पता है कि AI आने की वजह से अब एप्पल के मोबाइल फोन्स महंगे होने वाले हैं? नहीं नहीं, उसमें कोई एक्स्ट्रा AI नहीं आ रहा, बट महंगे होने वाले हैं। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। एंड मैं जो ये बात बोल रहा हूँ, ये कोई हवा में बात नहीं बोल रहा हूँ। एक्चुअली क्या है, AI की वजह से मेमोरी और स्टोरेज चिप की जो लागत है, जो कीमत है, वो बढ़ गई है, जिसके चलते इंडिया में अब एप्पल ने अपने प्रोडक्ट्स की कीमत कम से कम 1 लाख रुपए तक बढ़ा दी है। पहले भी मतलब जो कंपोनेंट्स आते थे वो सस्ते थे, मगर उनके रेट्स में तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही थी, बहुत ज़्यादा महंगे हो रहे थे, मगर उसका जो असर था ना वो कस्टमर्स तक नहीं आने दिया था। बट अब क्या है, अब तो करना ही पड़ेगा, एक वो स्थिति आ चुकी है कि हाँ अब तो प्राइजेस बढ़ाने पड़ेंगे। तो एप्पल ने बढ़ा दिए हैं सारे प्राइजेस अपने आईपैड के, अपने मिनी पैड के, अपने लैपटॉप्स के, तो सारे के सारे प्राइजेस बढ़ चुके हैं। और इसके बाद जो एनालिस्ट हैं उनका ये मानना है कि आने वाले टाइम में आईफोन भी महंगे हो जाएंगे। 1 लाख रुपए तो नहीं, मगर हाँ 50,000 रुपए के आसपास तो महंगे हो जाएंगे। एंड मैंने अपने सूत्रों से पता कराया कुछ, और वो पता चला मुझे ये कि देखो, सितंबर और अक्टूबर ये 2 महीने ऐसे होने वाले जब आईफोन 18 आने वाला है सबके सामने, और आईफोन 18 जैसे ही आएगा तब फिर से पब्लिक बौखला जाएगी। पब्लिक बोलेगी अरे मुझे भी खरीदना है, मुझे भी खरीदना है। तो आप लोग भी इस चीज़ को ज़रा ध्यान दीजिएगा कि हाँ, आईफोन के पीछे नहीं भागना मेरे दोस्त, अपनी सेविंग्स के पीछे भागना है। चलिए, जब टेक्नोलॉजी बढ़ती है ना तो सब लोग उसके पीछे भागते ज़रूर हैं। और ऐसी एक टेक्नोलॉजी है जो कि जापान में बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है, जापान की वीडियोज़ आ रही है, वो इंडिया में भी है टेक्नोलॉजी, और इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं 4DX। क्या है ये टेक्नोलॉजी, करेंगे इसके बारे में बात, मगर बैकग्राउंड में जो म्यूजिक बज रहा है ना वही उसको तेज कर देते हैं। ख्याल है ये गाना, सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर तलविंदर की आवाज में।

0: हसीनो।
1: घर का छोटा हूँ इसलिए निकम्मा हूँ।
2: दिल में जख्म खाते हैं, जान से गुजरते हैं।
3: सुन भाई सुरेंद्र।
4: हाँ भाई सुरेंद्र।
3: मैं घर का छोटा हूँ जिसको सब निकम्मा बोलते हैं। मम्मी बोलती है काम कर लिया कर, रोज सुबह पानी की बोतल फ्रिज में रख देता हूँ, रिमोट मैं ढूंढता हूँ, पापा का फोन मैं चार्ज करता हूँ, जब सब सोते हैं तब लाइट बंद मैं करता हूँ, जब घर में कुछ गलत होता है सब बोलते हैं इसी ने करा होगा, मेरी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता, मार्केट से सामान मैं ही लेकर आता हूँ, फिर भी सब मुझे ही कहते हैं।
4: सही कह रहे तुरेंद्र, कितना भी कर ले, कार का छोटा बेटा रहेगा तो निकम्मा ही।

0: भाई।
1: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
1: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई, अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: पर
1: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
2: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
1: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े हैं साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।
4: यो बॉयज, आई एम सिंगिंग सॉन्ग, सुपर सॉन्ग।

0: Availability.
1: Why the school availability तो नहीं पता, मगर एक चीज मुझे जरूर पता है कि अब आप लोग मूवी देखते देखते उसे फील भी कर सकते हो। समझ लो हॉरर मूवी आ रही है और एकदम से भूत निकल गया था, आपको लगेगा कि हाँ आपके सामने से निकल गया है। मैं 3D की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 4DX टेक्नोलॉजी की। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ। अब देखो 4DX टेक्नोलॉजी होती क्या है, इसमें क्या होगा अगर आप लोग मूवी देखने जाओगे ना, सपोज करो आप लोग मूवी देख रहे हो, उसमें कोई सीन है जहां पर आपको पहाड़ दिखाए गए हैं, वाटरफॉल दिखाया गया है, धुंध दिखाई गई है, तो आपको ये सब चीज़ें फील होगी रियलिटी में। मतलब कि आपकी जो सीट्स होंगी वो मोशन सीट होगी, और सपोज कर लेते हैं कि एक कैरेक्टर है, वो आप हो, समझ लो वो आप कैरेक्टर हो, और जब आप उस मूवी में घूम रहे हो तो आपकी सीट्स हिलेगी, आपके ऊपर बौछार आएगी पानी की, आपको खुशबू आएगी उस एनवायरनमेंट की, मतलब बिल्कुल रियल लगेगा। और ये टेक्नोलॉजी की बात जापान में बहुत तेज़ी से हो रही है, क्योंकि जापान में एक वीडियो वायरल किया गया है, मतलब वायरल हो गया है, किया गया है एक्चुअली में उधर वीडियो दिखाई जा रही थी सुनामी की, और सुनामी की वेव उठी और हॉल के अंदर पानी आया, वो भी बहुत सारा, मतलब इतना पानी आया कि जितना लोगों को भिगा दिया। और ये वीडियो देखने के बाद लोग कमेंट ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इंडिया के लोग कह रहे थे कि वो लोग लास्ट मूवी देखेंगे ओपनहाइमर। आप लोगों को पता होगा ओपनहाइमर कौन सी मूवी है, मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा। अब मैं आपको बात करता हूँ इंडिया की। आपको क्या लगता है इंडिया में 4DX थिएटर नहीं है? बिल्कुल है, ये एक मल्टी सेंसरी सिनेमा टेक्नोलॉजी है जिसमें आप लोग मूवी को देखते देखते स्क्रीन से भी पीछे जा सकते हो, मतलब सारी चीज़ें फील कर सकते हो। तो आपको दिल्ली NCR में बहुत सारे मिल जाएंगे, नोएडा में भी है, दिल्ली में भी है, आई गेस फरीदाबाद में भी एक आध खुल ही जाएगा आने वाले टाइम में। तो ये 4DX टेक्नोलॉजी जैसी आएगी, मैं तो चाहता हूँ इसमें कोई अच्छी सी मूवी देख सकूँ जिसको मैं फील भी कर सकूँ, और मतलब पहाड़ों पे जाने का मन करे तो ऐसी मूवी देखाओ, बस बहुत है और क्या चाहिए लाइफ में। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, आप सभी के लिए गाना चलाने का वक्त आ चुका है। और हाँ, इसी के साथ साथ फिल्मों की बात करी है तो फिल्मों की और भी बात करेंगे, मगर इस गाने के बाद। कौन कौन सी मूवी साल 2026 की ट्रेंडिंग होने वाली है, सब कुछ बात करेंगे, मगर उससे पहले ये गाना आप सभी के लिए रेडियो महारानी पर।

0: गर्लफ्रेंड हूँ, इसलिए कलेशी हूँ। यार निया सुन।
1: हाँ सिया बोल।
0: यार मैंने पूछा कैसे हो, उसने बोला बढ़िया, ये भी नहीं पूछा कि तुम कैसी हो। और जब मिलने के लिए बोलो तो कहता है टाइम नहीं है, और दोस्तों के साथ घूमने के लिए टाइम ही टाइम है। जिस लड़की को जानता तक नहीं है उसकी फोटो पे भी लाइक कर देता है, और जब पूछो तो बोलता है बेबी बस फ्रेंड है। और पता है रील्स पे रिप्लाई ना करके रिएक्ट करके छोड़ देता है, और जब मैं कंप्लेन करूं तो मुझे कलेशी कह देता है।
1: सही कह रही है, सब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को कलेशी कहते हैं।

0: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
1: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: आप लोगों ने आलिया भट्ट को देखा?
1: नहीं नहीं, फिल्मों में तो देखा होगा, रियल में नहीं पूछ रहा हूँ। मैं पूछ रहा चाह रहा हूँ अभी जो लेटेंट वाले शो में आई थी रिसेंटली, उसमें देखा आपने आलिया भट्ट को? यार कितनी अच्छी लग रही थी ना, मतलब सुंदर। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। एक वक्त था जब आलिया भट्ट मेरी क्रश हुआ करती थी, फिर उसकी शादी हो गई। मतलब क्या कर सकते हैं हम लोग, कुछ नहीं कर सकते, हम तो सिर्फ बोल सकते हैं। खैर, उनकी मूवी आ रही है अल्फा, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। और अल्फा ही नहीं, अभी 3-4 मूवीज और हैं जो मोस्ट अवेटेड मूवीज में आ रही है 2026 की। अब 2026 में एक मूवी आने वाली थी मार्च के टाइम पर, उसका नाम था टॉक्सिक। और टॉक्सिक जो ये मूवी थी, एक्चुअली में ये थी सुपरस्टार यश की, साउथ इंडियन सुपरस्टार की। KGF में आपने इन्हें देखा और सब लोग इनके लिए इंतजार कर रहे, सब लोग इंतजार कर रहे थे कि टॉक्सिक देखेंगे। बट टॉक्सिक को पोस्टपोन कर दिया गया और फिर बोला गया कि अक्टूबर नवंबर में रिलीज करेंगे, मगर फिर अक्टूबर नवंबर से भी पोस्टपोन कर दिया गया, जस्ट बिकॉज अक्टूबर या नवंबर में रामायण मूवी आने वाली है। डेट टू भी एग्जैक्ट अभी आने वाली है, डेट भी पता लग जाएगी आप लोगों को। और अभी तो सिर्फ टीजर आया था, ट्रेलर भी आना बाकी है। एंड रामायण मूवी किसकी है? रामायण मूवी है रणबीर कपूर की। एंड कह रहे हैं कि रणबीर कपूर ने इसमें बहुत ही ज़्यादा, मतलब पूरी अपनी मेहनत डाल के दी है। अब देखते हैं कि मूवी जब सामने आएगी तो ऑडियंस की उम्मीदों पर खड़ी उतरती है या फिर नहीं। और इसी के साथ साथ एक और मूवी है जो कि है SRK की, और SRK की मूवी का नाम है किंग। अब ये NNS किंग, अब किंग किस चीज़ के ऊपर है इसका कुछ नहीं पता, मगर जब ये 4 मूवीज़ का मैंने नाम लिया, किंग, अल्फा, रामायण और टॉक्सिक, अब इन 4 मूवीज़ को एक पल के लिए साइड में रख देते हैं और एक मूवी के बारे में बताता हूँ आपको। उस मूवी का नाम है चौहान और उसमें एक है डायलॉग। मतलब अभी सिर्फ टीजर लॉन्च हुआ है और उसका डायलॉग जैसे ही सामने आया तो लोगों ने अटकलें लगानी शुरू कर दी कि SRK और अजय देवगन के बीच में कुछ तो बहस हो चुकी है। क्या है ये पूरा मामला, करेंगे इसके बारे में बात। मगर उससे पहले रेडियो महारानी पर आप सभी के लिए जो बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा है, इसकी वॉल्यूम तेज हो जाए। ब्रदर वी की आवाज में आप सभी के लिए ये गाना आत्मा रामा, ओनली ऑन 89.6 FM। कुछ हटके।

अस्थमा के मरीजों के लिए धूल और धुआं जीने का हक छीन सकता है। आइए मिलकर एक कदम उठाएं, AQI का लेवल कम करें, गाड़ी को पूल करें और पेड़ लगाएं। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ, तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद।
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुना भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे
0: हो? हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
1: अरे एक गिलास तो पीती जा। सुन।

एक शरीर है दो मनुष्य लगता मेरे भीतर रहते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि सब कुंडली देख के कहते हैं, एक तो है सीधा बड़ा और दूसरा बहुत ही पापी है। मेरी हरकतों से बस पता चले कब कौन सा

ज्ञान संसार गना पर बुद्धि को एकांत करा। मैं पढ़ता गया मैंने बुद्धि में ब्रह्मांड भरा। मैं शून्य बना, मैं शांत बना, डिवोइस मैं देवांश बना। मैं लिखता गया अब कोई लगाम विचार पे ना।

इस गाने में एक लाइन है, एक शरीर है दो मनुष्य लगता, मेरे भीतर रहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, सब कुंडली देख के कहते हैं। तो ये लाइन मुझे अच्छी लगती है, क्यों? क्योंकि कलाकार हूँ ब्रो। ऐसा तो होता ही है ना कि मैं आपके सामने जो हूँ वो मैं घर वालों के सामने नहीं हूँ। अगर मैं घर वालों के सामने इतना बोलने लग गया तो शायद मुझे घर से बाहर निकाल लिया जाएगा। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। एंड अभी जो मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि ऑनलाइन एक टीजर लॉन्च हुआ है और टीजर था फ्रॉम द मूवी चौहान। और ये चौहान मूवी में एक्टर हैं अजय देवगन। अब अजय देवगन की फिल्म आ रही है और कोई कंट्रोवर्सी ना हो ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब कुछ टाइम से तो ऐसे ही हो रहा है ना। तो अजय देवगन की जो ये फिल्म है ये तो भाई सब लोगों के दिल पे उतरने वाली है, क्योंकि इसमें कुछ राइट्स के सीन दिख रहे हैं जहाँ पर अजय देवगन है पुलिस की साइड से, NSG की साइड से या फिर आर्मी की साइड से, इन तीनों में से किसी फोर्सेस की साइड से है। और फिर उसके बाद एक डायलॉग आता है और डायलॉग ये कहता है कि पठान से कहना चौहान आ रहा है। बस पूरी मूवी में

बच्चन के ऊपर फिल्माया गया वो गाना झुमा चुमा दे दे, यार क्या अमेजिंग सॉन्ग है, और उसको जब रीमेक किया गया है तो और भी ज़्यादा अमेजिंग हो गया है। चलिए इनके बारे में तो और भी बात होगी, फिल्मों के बारे में बात हो चुकी है तो बात करेंगे हम लोग साथ में बिहार वर्सेज अमेरिका की, क्योंकि लोग कंपेयर कर रहे हैं, क्या कंपेरिजन चल रहा है, करेंगे उसके बारे में बात मगर इस गाने के बाद।

रुपए पंज लैके इथे खांदा सीगा लेज ओ देशों काली तू का तो गया परदेस छेती मिल बापू साडा लगदा ना जी उड़ीकदा पुत ते उड़ीकदी आती।

0: घर का छोटा हूँ इसलिए निकम्मा हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: मैं घर का छोटा हूँ जिसको सब निकम्मा बोलते हैं। मम्मी बोलती है काम कर लिया कर, रोज सुबह पानी की बोतल फ्रिज में रख देता हूँ, रिमोट मैं ढूंढता हूँ, पापा का फोन मैं चार्ज करता हूँ, जब सब सोते हैं तब लाइट बंद मैं करता हूँ, जब घर में कुछ गलत होता है सब बोलते हैं इसी ने करा होगा, मेरी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता, मार्केट से सामान मैं ही लेकर आता हूँ, फिर भी सब मुझे ही कहते हैं।
2: सही कह रहा सुरेंद्र, कितना भी कर ले कार का छोटा बेटा रही का तो निकम्मा ही।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: वी बैक जसमानक डिवाइन संडे नो कॉम्पिटिशन।

अस्थमा के मरीजों के लिए धूल और धुआं जीने का हक छीन सकता है। आइए मिलकर एक कदम उठाएं, एक UI का लेवल कम करें, गाड़ी को पूल करें और पेड़ लगाएं। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

जब भी आप लोग बिहार के बारे में सोचते हो या सुनते हो तो आप लोगों के मन में क्या आता है? मेरे मन में आता है खूब सारी हरियाली, खूब सारा अनाज, और बिहार से होते हुए जाती है एक गंगा मैया और साथ में वहां पर आता है बोधगया। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। और यहां पर लोगों ने बिहार को अमेरिका से कंपेयर करना शुरू कर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक आदमी है, वो रह रहा है यूएस में और वो रहने वाला बिहार का है, और उसने खुद बोला कि देखो बिहार और अमेरिका में ज़्यादा फर्क नहीं है। उसका ये कहना है कि देखो अगर मैं बिहार में आईफोन और एक बढ़िया सी गाड़ी में लेके घूमूंगा ना तो सब लोग सोचेंगे हाँ कोई अमीर बंदा जा रहा है, बट वही चीज़ जब मैं अमेरिका में लेके घूम रहा हूँ तो मुझे कोई पूछ भी नहीं रहा है। और आईफोन की तो मैंने आप सभी को आज भी बताया कि आईफोन तो महंगा होने वाला है इंडिया में भी, तो आपके जो दोस्त हैं आईफोन के शौकीन उनको बोल दीजिएगा ये बात। खैर वापस मुद्दे पर आते हैं, और मुद्दा यही है कि लगातार अगर आप ट्रैवल करते हो बिहार साइड और फिर उसके बाद आपके पास आईफोन है, उसके बाद आपके पास एक लग्जरी कार है, तो भी तो आपको तो बिल्कुल राजा माना जाएगा। बट वही चीज़ अगर आप यूएस में करते हैं तो वहाँ पर कोई भी आपको पूछेगा तक नहीं, क्योंकि वहाँ पर ये सब चीज़ें कॉमन है। अब मुझे समझ नहीं आता कि इस इंसान ने कंपेयर किया ही क्यों, क्योंकि देखो एज सच कंपेरिजन का कोई मतलब बनता नहीं था। तो इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हो बताइएगा जरूर। नंबर है 9654896896। अभी फिलहाल आप सभी के लिए पैराडॉक्स की आवाज़ में ये गाना जो बैकग्राउंड में बज रहा है, हाँ भूला मैं जहाँ मैं मस्ती में झूम, मेरी आवाज़ में अच्छा नहीं लगेगा, सुनिए इसको ओरिजिनल आवाज़ में।

0: गर्लफ्रेंड हूँ, इसलिए कलेशी हूँ। यार निया सुन।
1: हाँ सिया बोल।
0: यार मैंने पूछा कैसे हो, उसने बोला बढ़िया, ये भी नहीं पूछा कि तुम कैसी हो, और जब मिलने के लिए बोलो तो कहता है टाइम नहीं है, और दोस्तों के साथ घूमने के लिए टाइम ही टाइम है। जिस लड़की को जानता तक नहीं है उसकी फोटो पे भी लाइक कर देता है, और जब पूछो तो बोलता है बेबी बस फ्रेंड है, और पता है रील्स पे रिप्लाई ना करके रिएक्ट करके छोड़ देता है, और जब मैं कंप्लेंट करूं तो मुझे कलेशी कह देता है।
1: सही कह रही है, सब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को कलेशी कहते हैं।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: दिन में
1: स्पीड ब्रेकर्स
0: बकवास हैं,
1: बिल्कुल बकवास हैं। मैं बात करना चाहता हूँ फरीदाबाद के स्पीड ब्रेकर्स के बारे में। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। सरकार द्वारा लगाए गए स्पीड ब्रेकर्स की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ RWAs एंड गली के वो जो होशियार अंकल होते हैं उन लोगों के द्वारा लगाए गए स्पीड ब्रेकर्स, क्योंकि वो स्पीड ब्रेकर्स नहीं होते, वो दीवार होती है एक तरह से, क्योंकि उसमें गाड़ियां नीचे से रगड़ जाती है, बाइक स्कूटी सब नीचे से रगड़ जाती है। क्यों बनाते हो ऐसे स्पीड ब्रेकर? क्योंकि एक स्पीड ब्रेकर की ना ऊंचाई होती है और फिर उसकी एक लेंथ होती है कि हाँ इतनी लेंथ तक ही होना चाहिए। बट नहीं, इंडिया में तो लोग पहाड़ बना देते हैं या फिर लोग दीवार बना देते हैं। और इसके अलावा जब लोग स्पीड ब्रेकर नहीं बनाते तो फिर नेचर की तरफ से आते हैं कुछ स्पीड ब्रेकर्स, जैसे कि गाय और बैल और डॉग्स और ना जाने जितने भी स्ट्रे एनिमल्स हैं। तो वैसे तो फरीदाबाद को स्ट्रे एनिमल मुक्त घोषित कर दिया गया था आज से बहुत सालों पहले, बट काफ़ी बार ऐसा होता है कि मथुरा रोड पर, मथुरा हाईवे पर मैंने देखा है कि आवारा जानवर, आवारा पशु पहुँच जाते हैं। ऑल्दो नगर निगम अपना काम कर रहा है इनको पकड़ने का, बट स्टिल वो भी कितना करेंगे, वो भी पकड़ के कितनी बार ले जाएंगे, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो कि गाय को यूज़ करके छोड़ देते हैं, उनका दूध निकाल के जब वो दूध देना बंद कर देती है तो उनको सड़कों पर छोड़ देते हैं, वो भी बहुत गलत बात है। तो इसके ऊपर सबके अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं और मैं चाहूँगा आप लोग अपने अपने डिफरेंट ओपिनियंस दीजिए। और इसी के साथ साथ बात करेंगे फरीदाबाद की ट्रैफिक की, मगर इस गाने के बाद। लारे है इस गाने का नाम, जो बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है उससे आप पहचान ही चुके होंगे, मनिंदर भट्टर की आवाज़ में। सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप

0: कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हूँ, इसलिए गधा हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: सोचा था कॉर्पोरेट ज्वाइन करके आराम की नौकरी होगी, लेकिन दिन में 10 बार तो मीटिंग हो जाती है। मैनेजर को भी काम लंच के 10 मिनट पहले याद आता है। लीव मांगने पर वाई इंटरव्यू शुरू हो जाता है। काम मैं करता हूँ, क्रेडिट मैनेजर ले जाता है, और ये बात जब मैं घर वालों को बता दूँ तो वो मुझे गधा बोल देते हैं।
2: ठीक कह रहे तुरेंद्र, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय कितना भी कर ले, रहेगा तो गधा ही।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: दो सवाल मैं आप लोगों से पूछूंगा और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के अंदर से आवाज आएगी नहीं। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ। एंड मैं जो सवाल पूछ रहा हूं वो सिंपल सा सवाल यही है कि क्या फरीदाबाद के लोगों के अंदर सिविक सेंस है। अपने आप से पूछिए सवाल कि क्या हमारे अंदर सिविक सेंस है। आप लोगों को भी पता है आंसर, हाँ वो कहीं ना कहीं नहीं होगा। और दूसरा सवाल ये है कि क्या हमारे अंदर ट्रैफिक सेंस है, मतलब ट्रैफिक मींस कि हम लोग सड़क पर कैसे चलते हैं, तो उसका भी जवाब होगा नहीं नहीं नहीं। मतलब हम लोग खुद से काफ़ी बार गलतियां करते हैं और उस गलती को कभी मानते नहीं हैं। खुद से एक बार पूछिए कि कितनी बार आप लोगों ने सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी की है और कितनी बार आप लोगों ने सड़क पर रॉन्ग साइड गाड़ी चलाई है या फिर कितनी बार आप लोगों ने ट्रैफिक के सारे रूल्स फॉलो किए हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि हम लोग खुद से गलतियां करते हैं, जैसे कि हम लोग काफ़ी बार अपनी गाड़ी से चलते हुए कभी चिप्स के पैकेट तो कभी ग्लास तो कभी कुछ। और अगर ग्लास की बात आई गई है तो कल छबील लगाई थी लोगों ने निर्जला एकादशी के दिन, तो फिर उसके बाद लोगों ने पुण्य तो गवाया पानी पिला के, मगर उसके बाद धरती माता की कदर नहीं की, क्योंकि काफ़ी सारी सोसाइटीज़ के बाहर भी वीडियोस आई थी जहां पर लोगों ने प्लास्टिक के ग्लास फेंके हुए थे। इवन दो काफ़ी सारे लोगों ने कलेक्ट किए, इवन दो काफ़ी सारे लोगों ने स्टील के ग्लास में पानी पिलाया, काफ़ी सारे लोगों ने प्लास्टिक के ग्लास में पानी पिलाया, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब आप पुण्य कमाने का काम कर रहे हैं तो आप लोगों को इस चीज़ की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए। मेरा जो फर्ज था वो मैंने आप सभी को बोल दिया, और ऐसे भी आज तो फ्राइडे है तो ग्लास रोड पे मत फेंकना इतना कहना चाहूंगा, क्योंकि गाने का नाम है ऐसा ही है, मतलब वीकेंड वाला सॉन्ग है। सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर।
1: थोड़ी विस्की थोड़ी आइस, थोड़ी मुझ में बैड वाइब्स, थोड़ी बातें तेरी टॉक्सिक सी, थोड़ी थोड़ी सैड लाइफ। ये

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद।
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे
0: हो? हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें। और जुड़े साइबर सिपाही।

0: पंजाबी पॉप कल्चर।
1: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है,
2: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है। हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
3: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

लो जी, फरीदाबाद के बारे में मैं बात कर रहा था और इतने में मुझे लगा कि देखो अब सैटरडे संडे है तो फिर कहीं कुछ ना कुछ खाने के लिए चलना चाहिए। बट उसके बाद मुझे याद आया कि आज फ्राइडे नाइट भी तो है, तो अगर आज आप लोगों की प्लान्स है पार्टीज के तो मैं बस एक बात बोलना चाहूँगा कि पार्टी सेफली। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। एंड अगर आप लोगों के पार्टी के प्लान्स है ना तो एक काम करना, पार्टी के बाद आप लोग किसी सोबर इंसान से बोलना कि आप लोगों को ड्राइव करके NIT 1 ले जाए, वहाँ पर ना रबड़ी फलूदा मिलता है। ओह माय गॉड अमेजिंग टेस्ट, अब मुझे नाम याद नहीं आ रहा उन भैया का, बहुत टेस्टी, गुरुद्वारे के पास बैठते हूँ और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रबड़ी फलूदा बनाते हैं, कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है नथिंग। और अगर आप ओल्ड की तरफ रहते हैं तो ओल्ड में भी 16 सेक्टर में भी दोनों तरफ आपको रात को आइसक्रीम मिल जाएगी, फलूदा, रबड़ी फलूदा, और साथ ही साथ आपको वो जो सिंपल वाली आइसक्रीम नहीं होती जो होममेड टाइप की होती है वैसी वाली आइसक्रीम भी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा मैंगो शेक्स तो सबको पता है, चाहे फिर 10 सेक्टर हो, 3 सेक्टर हो, 11 सेक्टर हो, 15 सेक्टर हो, ओल्ड हो, बदरपुर हो, सेक्टर 21 हो, हर जगह मैंगो शेक की बहार है इस टाइम। तो ये सारी चीज़ें जो आप आज एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ देखो इन सब की बात कर दी है ना मैंने, तो मुझे भी मन कर रहा है अब जाके थोड़ा सा मैं भी मैंगो शेक पियाऊं। और इसीलिए मैं लेता हूं इजाज़त, मिलूंगा आप सभी से फिर से मंडे की शाम 5 से 8। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और रेडियो महारानी 89.6 FM पर सुनिए मेरा फेवरेट वाला गाना, वापस आएगी गीत विदेश बाजियां खूब सारी प्यार भरी बातें लेकर। तब तक के लिए सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी पर।

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई तुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन भी दी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5,000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती है तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती है तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे ATM हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरेंद्र, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

किताबों के पन्नों में कैद रहते हैं। कुछ लफ्ज मोहब्बत की स्याही में डूबकर लिखे जाते हैं और कुछ कहानियां बस दिल से दिल तक पहुंचने के लिए जन्म लेती हैं। और अभी वही सफर शुरू हो गया है जहां फासले मिटते हैं और मोहब्बत की आवाज आपके कानों से होते हुए आपके दिल में उतरती है। शो है इश्क बाजियां और मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत। और ये खास सा जो सफर है, ये जो खूबसूरत सा सेगमेंट है जिसका नाम है इश्क शायराना, जहां हम सिर्फ शेरो शायरी नहीं सुनते बल्कि हम उन अल्फाजों में छुपी मोहब्बत को महसूस करते हैं, उस दर्द को समझते हैं जिनका इलाज सिर्फ एक आहा नहीं है, और उन हंसी को भी संजोते हैं जो किसी खास के नाम शुरू होकर उसी पर खत्म हो जाती है। तो आज फिर इस महफिल में मैं आपको ले चलूंगी उन शायरों की गलियों में जहां हर मोड़ पर एक एहसास खड़ा है, हर चौराहे पर एक मोहब्बत आपका इंतजार कर रही है और हर धड़कन एक शेर बनकर आपकी रूह को छूने के लिए तैयार है। तो आज एक ऐसे ही शायर के बारे में बातें होंगी जिन्होंने इश्क को जिया था। लेकिन अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां और मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत।

0: बन जाएगी एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी रील। रूल नंबर 1, जियो टैग मत लगाओ क्योंकि ये इंस्टा है, जोमैटो नहीं। पासवर्ड यूनिक रखो, बर्थडे या लवर का नाम बिल्कुल नहीं, नहीं तो हैक होते ही तुम्हारी एस्थेटिक फीड बन जाएगी कॉमेडी कंटेंट। और हाँ, 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर लो, नहीं तो नेक्स्ट स्टोरी होगी न्यू अकाउंट प्लीज फॉलो बैक। और भाई, स्ट्रेंजर्स को पिक्स मत भेजना, ये कोई शादी.com का फास्ट ट्रैक थोड़ी ना है। अननोन लिंक्स, उस पे क्लिक करना मतलब वायरस को चाय पर बुलाना। तो इंस्टा यूज करो, मस्त रहो, पर सिक्योरिटी के साथ, वरना वायरल तो हो जाओगे लेकिन ऑरा माइनस हो जाएगा।
1: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
2: डियर आप, साइबर थ्रेट स्मॉल एक्शन से बड़ी प्रॉब्लम्स बना सकते हैं, सो बी सेफ, बी अलर्ट।

अचानक से कोई ये सवाल आपसे पूछ ले। खैर, इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत। तो लीजिए, पेश है पहला शेर और शुरुआत होगी आज उस खूबसूरत से शायर से जिन्होंने मोहब्बत को जिया, जिनकी मोहब्बत अधूरी रह गई लेकिन अमर भी हुई, और नाम है इनका साहिर लुधियानवी, जो हमारी हिंदी सिनेमा का एक बहुत बड़ा नाम है। और कहते हैं, मोहब्बत का सबसे सच्चा रूप वही है जो सिर्फ महसूस हो, जिसमें पानी की जिद ना हो, बस चाहने की ख्वाहिश हो। और शायद इसीलिए साहिर लुधियानवी की शायरी में हमें मोहब्बत एक सुकून और दर्द के साथ मिलती है। 1913 में लुधियाना में इनका जन्म हुआ। बचपन में पिता से अलगाव, जवानी में मोहब्बत की नाकामी और तन्हाई, इन सब ने उनकी कलम को एक ऐसा रंग दे दिया जो मोहब्बत के साथ साथ इंतकाम, समाज और इंसानियत के रंग भी समेटे हुए था। ये बहुत ही खास से शायर हैं और इनकी जो शायरी है, जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये जिंदगी में भी तो कहीं ना कहीं कनेक्ट होती ही है। और साहिर का नाम अगर मैंने लिया है तो अमृता का नाम ना है, ऐसा नहीं होगा। साहिर का इश्क अमृता प्रीतम के साथ अधूरा रह गया और ये सब जानते हैं, लेकिन इस अधूरेपन ने उनकी शायरी को अमर कर दिया। मतलब यार, ये शायरों की ना खास बात होती थी कि वो अपनी मोहब्बत बेशक अधूरी छोड़ दें लेकिन पन्ने जरूर भर दिया करते थे उसी मोहब्बत के नाम जो अधूरी रह गई। ऐसे ही इनके कुछ किस्से हैं जो बहुत ही खास हैं, लेकिन सबसे पहले बढ़ते हैं इन्होंने जो लिखा है उस पर, कि तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, कि तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहो ये परेशानी है भाई, अगर तुम मेरी नहीं हुई तो किसी और की भी मत होना, ये पहली शर्त प्यार की होती है, ये तो आप सबको मालूम है, लेकिन कितनी सीधी सी बात है ना, लेकिन दिल को आर पार चीर देने वाली बात है। साहिर की खासियत ही यही थी कि वो मोहब्बत को सिर्फ दिल और फूल में नहीं बांधते थे, बल्कि उसके पीछे का दर्द, समाज की बेरुखी और इंसान की मजबूरियां भी दिखाते थे। तो ऐसे ही कुछ बातें और ऐसे ही इनके कुछ किस्से मैं आपको बताती रहूंगी, लेकिन फिलहाल गाना सुनते हैं। गाने के बाद फिर से लौटूंगी, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी

चित्रा की आवाज में है ये बहुत ही प्यारा सा गाना और एआर रहमान साहब ने इसको कंपोज किया है। लिरिसिस्ट है महबूब और फिल्म है बॉम्बे। और कुछ गाने ऐसे होते हैं ना जो लगता है कि आज के टाइम में बड़ा ही मुश्किल है यार ऐसे गानों को बनाना, जो उनमें फीलिंग्स होती हैं, जो उनमें वो कनेक्टिविटी होती है कि जो सीधा हमारे दिल तक पहुंचते हैं और कहीं ना कहीं हम खुद को इमेजिन करने लगते हैं उस गाने में। ऐसे गाने बड़े मुश्किल हैं आज के टाइम में बनने। खैर, इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। और खासा सेगमेंट है जिसका नाम है इश्क शायराना। साहिल लुधियानवी साहब के बारे में बातें चल रही हैं, बहुत ही सीधी सी बात बोलते हैं लेकिन दिल को आर पार कर देती है ये बातें। और उनकी एक ना खास सी नज्म है जिसका नाम है ताजमहल। वो अगर आपने सुनी हो तो आपको पता चलेगा कि कितनी गहराई है उसमें, जहां उन्होंने शाहजहां के इश्क को सलाम करने की बजाय उनके इश्क की हकीकत पर सवाल उठाए हैं कि ताज तेरे लिए एक मजहर है उल्फत ही सही, कि ताज तेरे लिए एक मजहर है उल्फत ही सही, तुझको इस वादिये रंगों से अकीदत ही सही, मेरे महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे बज़्म-ए-शाही में गरीबों का गुजर क्या है। चलिए इस बात को आपको बहुत ही सरल सी भाषा में समझाती हूँ। साहिर जहाँ अपनी महबूबा से कहते हैं, ताजमहल तुम्हारे लिए मोहब्बत का एक निशान सही, तुम्हें इस खूबसूरत वादी से मोहब्बत ही सही, लेकिन मेरी महबूबा मुझसे कहीं और मिला करो, क्योंकि ये शाही महफिले गरीबों के लिए नहीं बनी है। जहाँ वो बादशाहत की ताकत के निशान है, वहाँ मोहब्बत की मासूम रूहों का जाना अच्छा नहीं होता। तुम्हें इस ताजमहल के पीछे छुपी हकीकत देखनी चाहिए। मतलब यहाँ उन्होंने ताजमहल को जो कनेक्ट किया है अपने इश्क से, वो बहुत खूबसूरत सी बात है, जिस बात पर कोई कभी सवाल ही नहीं उठा पाया। खैर, अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली गीत।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े हैं साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

इसी खूबसूरत से गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्क बाजियां और मैं हूं इश्क वाली गीत। और बहुत ही खूबसूरत सा सेगमेंट है जिसका नाम है इश्क शायराना। साहिर लुधियानवी के बारे में बातें चल रही हैं। साहिर की शायरी सिर्फ इश्क की तारीफ नहीं चाहती, वो मोहब्बत में ईमानदारी चाहते हैं, खामोशी में गहराई चाहते हैं। और वो कहते हैं, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। ये महज एक लाइन है, लेकिन इस लाइन में मोहब्बत, तन्हाई और एक पूरे रिश्ते की कहानी लिखी गई है। आज के दौर में जब इश्क को दिखावे में जीने का चलन है, वहां साहिर हमें याद दिलाते हैं कि मोहब्बत का असली रंग खामोशी में है, वो जो सिर्फ दिल से महसूस की जाती है और शायद कभी पूरी नहीं होती। खैर, मैं इस बात को नहीं कहूंगी कि मोहब्बत वही असल है जो पूरी ना हो। अगर आप एफर्ट्स करेंगे तो डेफिनेटली वो भी पूरी हो जाएगी, लेकिन अभी वक्त है गाने का। शो है इश्क बाजियां और मैं हूं इश्क वाली गीत।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आपका सिंपल पासवर्ड स्कैमर्स की इनकम स्ट्रॉन्ग कर सकता है, तो अब से अपने पासवर्ड बनाओ जैसे पकवान, ताकि स्कैमर्स ना पहुंचा सके आपको।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
1: कुछ हटके।
3: आप सुन रहे हैं आरजे गीत को इश्क बाजिया में ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

वैसे इस गाने में आप किशोर दा की आवाज को फील कर रहे होंगे, लेकिन ये जो आवाज है ये एआई की आवाज है, किशोर दा की आवाज नहीं है। लेकिन है, जहां एआई के कुछ जो ड्रॉबैक्स हैं वहां कुछ फायदे भी हैं कि हम इन नए गानों को उस पुराने एहसास में जी पा रहे हैं। इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। और अब सेगमेंट जो शुरू होने वाला है रेट्रो इश्क, जहां ऐसी ही एक मोहब्बत की कहानी के बारे में बात करेंगे जिसकी कहानी भले ही पूरी नहीं हुई हो लेकिन उस मोहब्बत ने कमाल किया है। तो चलिए रेट्रो इश्क में आज फिर चलते हैं, उसी मोहब्बत की गहराई को महसूस करते हैं। और ये खूबसूरत सी मोहब्बत है किशोर दा और मधुबाला की, जहां हंसी सिर्फ एक मुखौटा थी, अंदर कहीं टूटा हुआ इंसान था। कहते हैं ना कि कुछ मोहब्बतें बड़ा शोर मचाती हैं और कुछ चुपचाप किसी दिल के कोने में बस जाती हैं। और आज रेट्रो इश्क में उसी मोहब्बत के बारे में बात होगी जिसे हंसी में लपेटा गया मगर आंसू से सींचा गया, किशोर दा और मधुबाला की मोहब्बत। अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत।

0: रिड्यूस रीयूज रीसाइकिल यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
1: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
3: क्या कहा?

बहुत ही खूबसूरत सा गाना है और ये गाना है किशोर दा और लता जी की आवाज में। इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। और रेट्रो इश्क के इस खास सेगमेंट में हम आज बात करने वाले हैं किशोर दा और मधुबाला की मोहब्बत के बारे में। एक दौर था जब मधुबाला बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अदाकारा मानी जाती थी, मुस्कुराहट उनकी पहचान थी और चेहरे पर एक ऐसा नूर था जैसे पर्दे पर बस चांद उतर आया हो। और दूसरी तरफ थे हमारे किशोर दा, बॉलीवुड का सबसे चुलबुला बिंदास और थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा सा आवाज का जादूगर। जब दोनों पहली बार मिले तो एक स्टार और एक स्टैंड अप सिंगर की मुलाकात हुई, लेकिन ये मुलाकात मोहब्बत में कैसे बदल गई? दो लोग जो एक दूसरे से बिल्कुल ही ऑपोजिट थे उनको कैसे प्यार हुआ? इसके बारे में बात होगी, लेकिन अभी वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां और मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

रफी साहब की आवाज में है ये गाना और फिल्म हम किसी से कम नहीं जो आई थी 1977 में, और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत, और हम बात करने वाले हैं किशोर दा और मधुबाला की मोहब्बत के बारे में। दो ऐसे नाम जिनका जिक्र किए बगैर हिंदी सिनेमा के बारे में बात करना शायद बेईमानी है। एक एक्टिंग वर्ल्ड की सुपरस्टार थी तो दूसरा संगीत जगत के बादशाह। इन दोनों को जिंदगी में सब कुछ मिला, लेकिन इनके प्यार की कहानी का जिस तरह से अंत हुआ वो आज भी आपकी आंखें भिगो देगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये दोनों कैसे करीब आए, इनको कैसे मोहब्बत हुई। लोग अक्सर कहते हैं कि मोहब्बत के लिए वक्त चाहिए, पर कुछ मोहब्बतें पहली नजर में ही दिल पर दस्तक दे देती हैं। मधुबाला जो उस वक्त दिलीप साहब की मोहब्बत में थी और अपना दिल जो है वो भी तोड़ चुकी थी, और तभी किशोर दा उनकी जिंदगी में आते हैं एक हंसी का मरहम बनकर। मधुबाला अपने करियर में पीक पर थी जब उन्हें पता चला कि उनके दिल में छेद है और वो विदेश चली गई अपना इलाज कराने के लिए। और इस वक्त ये दोनों साथ में थे, यानी कि किशोर दा और मधुबाला साथ में थे, लेकिन जब किशोर दा को उनका पता चलता है तो उस वक्त वो बहुत भावुक हो जाते हैं और उन्हें सीधा शादी के लिए प्रपोज कर देते हैं। और जब कोई इंसान किसी से सच्चा प्यार करता है तो उसके साथ जिंदगी का हर लम्हा बिताने की चाह भी रखता है, फिर चाहे उसमें सुख हो या दुख, ये जानते हुए भी कि मधुबाला की जिंदगी का अंत कभी भी हो सकता है। लेकिन किशोर दा ने हमेशा उनका ख्याल रखा और उनसे शादी करने का फैसला लिया, और उन्हें कभी भी इस फैसले को लेकर पछतावा भी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि वो सच्ची मोहब्बत में थे और मधुबाला के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहते थे। इसके बाद क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगी गाने के बाद। गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां।

0: के तले।
1: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
1: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत रेट्रो इश्क, जो बहुत ही खूबसूरत सा सेगमेंट है। किशोरदा और मधुबाला के बारे में बातें चल रही हैं, जहाँ एक ऐसा वक्त आ गया था मधुबाला की जिंदगी में कि किशोरदा ने इनको सीधा शादी के लिए प्रपोज कर दिया। लेकिन इससे कुछ समय पहले की बात है, जब इनकी बहुत ही एक सुपरहिट मूवी रही जिसका नाम था चलती का नाम गाड़ी। सेट पर मजाक मस्ती और हंसी के बीच धीरे धीरे दोनों की जिंदगी एक दूसरे में घुलने लगी। और जब मधुबाला की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जहां ये इनको सीधा शादी के लिए प्रपोज करते हैं, लेकिन मधुबाला का परिवार इस रिश्ते से खुश नहीं था। और यहां जब किशोरदा की बात आई तो उन्होंने अपने सारे एफर्ट्स लगाए इस मोहब्बत को पूरा करने के लिए, और आखिर में उन्होंने अपनी मोहब्बत को पा लिया, दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन शादी के बाद होता यह है कि किशोरदा की फैमिली मधुबाला को एक्सेप्ट नहीं कर पाती। लेकिन पता है इन दोनों की मोहब्बत की सबसे बड़ी बात क्या थी? इतनी सारी चीजें होने के बाद भी इतनी बड़ी बड़ी बातें इनके रिश्ते पर कभी हावी नहीं हुई। देखो यार, हर कोई ये चाहता है कि जब किसी की जिंदगी का कोई नया चैप्टर शुरू हो तो उनकी फैमिली रहे उनके साथ, बड़ों का आशीर्वाद रहे उनके साथ। हालांकि कभी कभी किसी को ये खुशी नहीं मिल पाती, क्योंकि उनके परिवार उनसे अलग हो जाते हैं जब वो नए रिश्तों में बन जाते हैं। इनको भी अपनी फैमिलीज को पीछे रखना पड़ा, लेकिन इन्होंने अपनी मोहब्बत को पा लिया था उसी एफर्ट्स के साथ। और अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली गीत।

0: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
1: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। किशोर दा और मधुबाला के बारे में बातें चल रही हैं और बहुत ही इमोशनल सी इन दोनों की स्टोरी है। अच्छा, जब किसी की शादी होती है और शादी में बहुत सारी कस्में खाई जाती हैं कि वो एक दूसरे का साथ देंगे जिंदगी भर, चाहे सुख हो या दुख। खैर, आज के टाइम में ये बातें जो हैं वो बहुत ही बेमानी सी लगती हैं। शायद प्यार के मायने बदल गए हैं आजकल, शायद वो पहले वाली शिद्दत नहीं रही है। लेकिन किशोर दा की अगर मैं बात करूं, जिन्होंने अपनी हर कस्म को निभाया, मधुबाला को सबसे अच्छा इलाज उन्होंने कराया, लेकिन उनकी हालत जो है वो बीतते दिन बिगड़ती ही जा रही थी। इतना सब चल रहा था इनके साथ, लेकिन किशोर दा की मोहब्बत में जरा भी कमी नहीं आई। जीवन साथी बनने पर लोग कसम खाते हैं कि वो हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देंगे, और इस बात को किशोर दा ने करके दिखाया। उन्हें पहले से मधुबाला की सिचुएशन के बारे में पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने उनसे शादी की और आखिरी सांस तक उनका ख्याल रखा। ये जो प्यार की कहानी है ना, ये हमें यही सिखाती है कि सुख दुख में अपने साथी के साथ खड़े रहने का मतलब क्या होता है। और आई थिंक आप इनके प्यार की कहानी को समझ ही गए होंगे। एक ऐसा चेहरा जो हमेशा हमें मुस्कुराता दिखा, लेकिन अपनी जिंदगी में कितना कुछ झेल रहा था हमारे किशोर दा। और अभी वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटूंगी बहुत ही खास सा सेगमेंट लेकर। तब तक आप ये गाना सुनिए।

पल पल दिल के पास। और इसी गाने के साथ स्वागत है फिर से, शो है इश्क बाजियां और दिल दिया गल्ला लेकर हाजिर हूँ। दिल दिया गल्ला में आपके दिलों की जो बातें हैं वो आप तक पहुंचानी है, और एक बहुत ही खास से टॉपिक के साथ मैं आई हूँ। इश्क बाजियां शो है, और कई बार लोग रिश्तों में आ जाते हैं, बड़े बड़े रिश्ते बना लेते हैं, काफी सारे वादे कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप नहीं हो पाती है। और लोग कहते हैं कि क्या ऐसा हो रहा है जो रिश्ता मजबूत नहीं हो पा रहा है, रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो शायद इस बात के पीछे ना एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि आप अपने रिश्ते को ना गहराई से नहीं समझ पाते हैं। आप समझते हैं सामने वाले को, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से आपको समझना चाहिए। और अब बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि किस तरह से आप अपने रिश्ते को समझ सकते हैं, सामने वाले की रेस्पेक्ट कर सकते हैं ताकि आपका रिश्ता और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। इसी बारे में बातें होंगी आज दिल दिया गल्ला में। फिलहाल वक्त है गाने का, शो इश्क बाजियां, और गाना है फिल्म हमारी अधूरी कहानी से।

0: सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना की है तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
2: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
3: किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ फोन कॉल पर OTP, UPI, पिन कोड और CVV शेयर ना करें। ATM बूथ से पैसे निकालते समय अनजान व्यक्ति की मदद ना लें।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
0: बच्चों को स्कूल से लाने में लेट हो जाती, इसीलिए रेड लाइट जंप करी।
4: बारिश तेज होने से पहले घर पहुंच जाऊं, बस इसीलिए गाड़ी तेज चला रहा था।
5: मेरा घर तो यही पास में है, इसलिए रॉन्ग साइड से जा रहा हूं। और अंकल, मेरी तो साइकिल है, कोई गाड़ी थोड़ी है।
1: रेडियो महारानी पूछता है, अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने का आपके पास क्या बहाना है? तो ट्रैफिक रूल्स की रिस्पेक्ट करो, तो ना एक्सीडेंट होगा और ना ट्रैफिक की परेशानी। FM 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

शान की आवाज में है ये बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक सुनो ना। और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है शो इश्क बाजियां और सेगमेंट है दिल दियां गल्ला। और जब भी आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो आपको रिश्ते और आपकी अंडरस्टैंडिंग के बारे में बहुत अच्छे से सोच लेना चाहिए, क्योंकि कई बार लोग ऐसे रिश्तों में बन जाते हैं जो उनके लिए आगे चलकर बहुत टॉक्सिक साबित हो जाते हैं। और अक्सर वो लोग घुलते रहते हैं उन रिश्तों में, ना तो छोड़ पाते हैं उन रिश्तों को और ना ही रह पाते हैं। और कई बातों में लोग पहले ही समझ जाते हैं, लेकिन कई रिश्तों में लोग आगे बढ़ जाते हैं और ऐसा रिश्ता टूटना लाजमी है। लेकिन क्या करना चाहिए उस टूटते हुए रिश्ते को बचाने के लिए, ऐसे में रिश्ते को गहराई से आपको बहुत जरूरी है जानना। कोई इंसान आपके लायक है या नहीं, आप कुछ बातों पर गौर करके ये पता लगा सकते हैं। तो वो कौन सी बातें होने वाली हैं जिन पर आपको गौर करना है? और सबसे पहली बात पता है क्या है? जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि रिश्ते में भले ही प्यार कम हो जाए, कैर कम हो जाए, लेकिन रिस्पेक्ट कम नहीं होनी चाहिए यार। तो इसलिए रिश्ते में ना रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है और हर किसी रिश्ते में रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। लेकिन आपके मन में अपने पार्टनर और आपके पार्टनर के मन में आपके लिए अगर सम्मान है, इज्जत है, तो आपका रिश्ता ताउम्र चल सकता है। इसीलिए सबसे पहले ख्याल रखिए कि क्या सामने वाला आपकी इज्जत करता है दिल से। आप तो कर रहे हैं, आप तो पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन क्या सामने वाले की तरफ से भी वो एफर्ट्स है या नहीं है? और अगर है तो आप समझिए उसे, और इस तरह समझकर आप अपने रिश्ते को बेहतरीन साबित कर सकते हैं। फिलहाल वक्त है गाने का, चलिए सुनते हैं इस गाने को। फिल्म भाग मिल्खा भाग से है गाना, बगैर तेरी किए सुनते हैं इस ट्रैक को।

बातें आहिस्ता हैं और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है पंकज उदास की आवाज में है बहुत ही खूबसूरत सा गाना और आहिस्ता कीजिए बातें। सेगमेंट है दिल दियां गल्लां और बातें चल रही हैं कि किसी भी रिश्ते को गहराई से कैसे समझा जाए। कहते हैं कि हर रिश्ते की नींव होती है विश्वास। कोई रिश्ता तभी मजबूत हो सकता है जब एक दूसरे पर आपको पूरी तरह से यकीन हो। अपने रिश्ते को हेल्दी बनाने के लिए और गहराई से जानने के लिए एक दूसरे पर भरोसा करना बहुत जरूरी है और ये भरोसा ही वो होता है जो एक स्पेशल बॉन्ड बनाता है। तो इसीलिए आप अपने पार्टनर पर, आप जिससे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, उस पर भरोसा बनाए रखिए। और अगर सामने वाला आप पर भरोसा करता है ना दिल से, तो आप उसके भरोसे को कभी ना तोड़े, क्योंकि ये ट्रस्ट अगर एक बार टूट गया तो जुड़े नहीं जुड़ता है यार। क्योंकि कहा ना, हर रिश्ते की नींव होती है यकीन। और इस तरह से आप किसी को गहराई से जान सकते हैं। फिलहाल वक्त गाने का है, शो इश्कबाजियां, मैं हूं इश्क वाली की।

0: ए भाई दरा देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना ना गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी

ऐ काश कि हम होश में आने ना पाए। इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है शो इश्क बाजियां, मैं हूं इश्क वाली गीत, और सेगमेंट है दिल दियां गल्ला। बातें चल रही हैं कि कैसे अपने रिश्ते को गहराई से जाने। कहते हैं कि जब किसी से प्यार होता है तो उस पर आप पूरा अधिकार जमा सकते हैं, लेकिन अधिकार तो जमा रहे हैं आप, लेकिन इसके साथ साथ ये भी जान लीजिएगा कि अधिकार के चक्कर में कहीं आप उसकी आजादी तो नहीं छीन रहे। जिससे भी आप प्यार करते हैं उसे आजादी देना बहुत जरूरी है। अगर वो आपका है तो आप भले ही उसे कितनी आजादी दे दीजिए, वो हमेशा आपका ही रहेगा, हमेशा आपके पास ही लौटेगा। तो इसीलिए रिश्ते में ना आजादी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप उसकी आजादी छीन लेते हैं तो यकीनन उस रिश्ते का अंत हो ही जाता है एक दिन। और साथ ही साथ एक कम्युनिकेशन गैप होता है ना, उसको भी आप फिल कर सकते हैं, और इस तरह से आप अपने पार्टनर को गहराई से जान सकते हैं, रिश्ते को गहराई से जान सकते हैं। और अपनी बातों को मैं विराम दूंगी क्योंकि समय सीमा समाप्त हो गई है, और मैं ऐसे ही खास से टॉपिक के साथ आपसे मिलने वाली हूं। लेकिन अभी दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यार बांटते रहिए।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: अपने बैंक या डिजिटल खातों के बारे में किसी अनजान व्यक्ति को जानकारी ना दें। किसी प्रकार के मैसेज या अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। रेडियो महारानी 89.6 द्वारा

यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: सिनेमाज़, पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब। अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते। जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते। वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता। और ये गाना कभी नहीं बन पाता। रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना। जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
1: ओ करम खुदा रहा है, ओ करम।

असलियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
1: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हुए?
0: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
2: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी। 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यों था पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
2: अपना दिल तो आवारा।
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ रात बाकी बात बाकी में।

बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूँ भागते भागते खुद से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ये खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है।

असलियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: पुष्पा आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।
1: सावधान, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए।
2: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
3: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
4: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: ए भाई दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना न गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
3: पुष्पा, आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।

0: सड़क सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना की है 3 यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
2: बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी
3: 89.6 FM कुछ हटके।

0: 89.6 FM.
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
1: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
0: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना न गाना पड़े।
1: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी। रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
3: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
4: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
5: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: आप हमसे हमारा आईलाइनर मांग लेते, नेल पेंट मांग लेते, काजल या मस्कारा मांग लेते, यहाँ तक कि प्लेट में पड़े लास्ट दो मोमोज भी मांग लेते। अरे हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने आपने तो हमारे घर में बची लास्ट पानी की बोतल ही मांग ली।
1: अब सही टाइमर करो शुरू और पानी वेस्ट होने से बचा लो गुरु।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: Oh my god! Special offer! Get XYZ brand clothes worth ₹5,999 and just ₹599! Click on the link now.
1: ठहरो जरा, रुको जरा, ऑनलाइन खरीदारी में रखो थोड़ी समझदारी, सुरक्षित वेबसाइट से करो अपनी खरीदारी, फर्जी वेबसाइट से बचो, साइबर अपराधियों के जाल से बचो, वरना होगी बहुत परेशानी।
2: रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
1: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है, और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है। मैं हूं एम्बुलेंस। हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती है सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
1: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
0: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
2: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
0: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
2: आवारा हूँ, आवारा हूँ।
0: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना ना भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम, कुछ हटके।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारे

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि उनका साथ ही हमारा सुकून है।

0: कदी
1: कुड़ी मैनू कहती
2: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
3: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
4: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
5: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला।

0: दूं, गाना बजा दूं।
1: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
2: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी। सदा सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

का दिल तेरा लेके ही तो लिख बेबी किसी से भी पूछ लौंडा टू मच बोली में थोड़ा रियान भी टच है जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच है बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ बी ए डी शाह नाम बदल दियो मेरा बेबी जो ना कर रहा दी तेरी ना

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो दिल से जियो।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
3: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
2: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
3: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई, अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
4: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
5: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 एफएम, कुछ हटके।
6: चल अर्जुन, शुरू हो जा।
2: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
6: अर्ज नहीं होता, अर्ज अर्ज।
2: शायरी पे ध्यान लगाओ।
6: इरशाद,
2: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
6: मेरा नहीं, तुम्हारा ही होगा,
2: सबका ये। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
6: ये बात तो सही है।
2: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
6: कैसे कैसे?
2: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तो मैं मोटिवेट हो जाता।
6: अरे यार, वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो, मैं तो चली को मेरी बस आ गई।
2: सुनो सुनो।

0: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
1: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
0: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
2: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
0: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
2: आवारा हूँ, आवारा
0: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना न भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम, कुछ हटके।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यूदा पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
2: अपना दिल तो आवारा।
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ रात बाकी बात बाकी में।
2: बहुत भोला है बेचारा, मैं जाने किस पे आएगा।
3: सदा सुरक्षित रहो, अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
4: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल वॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

0: फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं।
1: तुम अभी इसे लायक?
0: चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स, ओटीपी सब दे दूंगा।
2: अच्छा,
0: बस मेरी शायरी सुन लो।
1: फिर
0: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
1: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
0: अरे, बाय।

बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूँ भागते भागते खुद से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ये खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later,
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाए अपना ब्राइट फ्यूचर।
3: बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यों दा पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
2: मैं अपना दिल तो आवारा।
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ रात बाकी बाद बाकी में।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।
4: पुष्पा, I hate water wasting रे, जा जाके टंकी बंद कर।

0: तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
2: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हुए?
1: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
3: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी। 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

फ्लॉज पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब। अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते। जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते। वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता। और ये गाना कभी नहीं बन पाता। रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना। जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: 89.6 FM.
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं.
3: कुछ हटके.
4: हाल कैसा है जनाब का?
5: क्या ख्याल है आपका?
4: तुम तो मचल गए.

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था, वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?

0: पहले जरा आप मुस्कुराइए।
1: मुस्कुराने की न कोई बात है,
0: आज देखिए तो क्या हसीन रात है।
1: ओह काम तो बताइए बताइए।
0: ना ना ना पहले

0: सादा है।
1: बोलो बोलो।
0: आज लेना एक वादा है।
1: क्या?
0: आजा आजा शादी का इरादा है। शादी का इरादा है।
1: शादी
0: का इरादा है।
1: शादी ना बाबा ना।
0: मगर क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं
1: बाय बाय।
0: सुनो तो मोना, सुनो तो, सुनो तो।
2: आप यहाँ आए किस लिए? आपने बुलाया इसलिए। आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए।

तुम्हारे हैं।

0: जरा आप मुस्कुराई, पहले जरा आप मुस्कुराई,
1: पहले जरा आप मुस्कुराई।
2: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
3: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
2: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
3: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
4: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
5: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

है मेरे लिए, मेरे लिए। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था, वो भी उधर हाथ ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?

0: कोई हम उसे।
1: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
1: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अरोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: अरे ओ सांबा, कौन सा रेडियो चैनल सुनता है रे?
1: सरदार रेडियो महारानी 89.6 FM।
2: अच्छा अच्छा।

रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं कृष्ण वाणी। श्रीमद् भगवद गीता के 5 खास उपदेश, जिनका पालन करके आप अपने अमूल्य जीवन को खुशियों से भर सकते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहली सीख के साथ, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। वैसे तो भगवद गीता का हर अध्याय ज्ञान से भरा है, लेकिन गीता का तीसरा अध्याय जिसे कर्म योग भी कहा जाता है, ये गीता का सबसे अनमोल अध्याय है। इसमें श्री कृष्ण बताते हैं कि हर मनुष्य कर्म के बंधन से बंधा हुआ है। हम एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकते। जब हम सोते हैं तब भी हमारा मन काम करता रहता है। मनुष्य कभी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, लेकिन अगर जीवन में तरक्की करनी है तो मनुष्य को निष्काम भावना के साथ अपना कर्म करते रहना चाहिए। फल की कोई भी इच्छा नहीं रखनी चाहिए, इसीलिए कर्म करते जाओ, फल की इच्छा को त्याग दो।